नमस्कार, एफएम बयानिक से दोशरिया 7 MHz से असी आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन बुधवार है, शक संवत 1948 ते ज्येष्ठ महीने दी 20 तारीख है। तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जून महीने दी 10 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे ने। साढ़ी अज दी सभा दे प्रोग्राम हुण शुरू हुंदे ने।

0: दरवाजे अपने खुले रखता है।
1: राम की कृपा अनंत है जिसका कोई पारावार नहीं। बरसाए जा रहे हैं रात और दिन, उसका प्यारा कोई भक्त ही जान सकता है। राम नित कृपा करते हैं।

मालक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं और ना मेरी आरजू रहे।

उस परमात्मा दी खेड तू ना जाने, उस परमात्मा दी खेड ना तू जाने, जो रहे विच पाणे बादशाहियां माणे, बादशाहियां माणे।

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तो बुल्गारिया आते फिनलैंड दे दो दिना सरकारी दौरे ते होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवी दिल्ली विच लैंड पोर्टल मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनियम दा उद्घाटन किया। केंद्रीय सेहत अते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नवी दिल्ली विच प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दे 10 साल की याद विच PMSMA दी 10 साल देखभाल दा एक दहाका विषय ते तहत देशव्यापी जश्ना दी शुरुआत कीती। व्यापार मंत्रालय दा कहना है कि भारत दियां बरमदां 12 सालां विच 866 अरब अमेरिकी डॉलर तक वधियां। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 31 स्टार्टअप्स अते उन्हां दे संस्थापकां नूं 1 करोड़ रुपए तो वध दी सीड ग्रांट वंडी। पंजाब विच झोने दी लुआई लई तीजा पड़ा कल तो आरंभ हो गया है। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जलंधर तो लुधियाना दिल्ली तक इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक चलन वाली 5 नवीं सुपर इंटीग्रल वॉल्वो कोच बसा हरी झंडी दिखा के रवाना किया। अमृतसर देहाती पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों नाल सांझी कार्रवाई दौरान सरहद पार बैठे संचालकों नाल जुड़े 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया अते 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पुरब मौके पाकिस्तान स्थित इतिहासिक गुरधामा के दर्शन करने लई अज 541 श्रद्धालुओं का जत्था

3 मिनट तक प्रोग्राम मॉर्निंग गुड यानी गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच और तसीद उनकी ताया 102.7 मेगाहर्ट्ज 103.6 मेगाहर्ट्ज आपने सारे स्रोते भी साडे नाल जुड़े हुए ने और न्यूज़ ऑन योर ऐप दे जरिए तो फिर बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए ने साडे नाल दिल से दिल तक।

0: सुनो, की तुसी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बारे सुनिया है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इस नाल तोड़ा कर सूर्य घर बन जाता है, यानी तोड़ा बिजली दा बिल जीरो। होर पैदा हुई कोई भी वादू बिजली ग्रिड नू बेच के पैसे भी कमा सकते हो। ता तुसी बैठे क्यों हो? हुने रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in ते।

जी बिल्कुल जी, दिल से दिल तक दा कनेक्शन है, बड़ा ही स्ट्रांग कनेक्शन है तुहाडा भी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुहाडा नहीं साडा जिहड़ा है ना वह कनैक्शन वाकई बड़ा स्ट्रोंग है। वेल जी प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग जलंधर। गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम के इस सिलसिले के लिए अगर असी गल करिए तो ये कह रही सी मैं कि तुसी किसी चीज़ जिहड़ी है वह ख्याल रखना कदे कदे भूल जाते हो, कि चीज़ है जिहदा ख्याल रखना भूल जाते हो, दसो चलो मैनू फटाफट दसो। मैं क्या मेरे हिसाब दे नाल बहुत सारे लोग ने जिहड़े भूल जाते ने रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी की गल कर रही हूँ मैं। बिल्कुल जी, रोड सेफ्टी यानी कि रोड के उत्ते जी सारी सुरक्षा है उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो जी कहते हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म यहोजे होंगे ने जेडे कि साढ़े उत्ते बड़ा ही ज़्यादा प्रभाव पाते हैं, और वो है आकाशवाणी 102.7 MHz। रोज़ असी थानू कहने कि रोड के उत्ते अपनी सुरक्षा जी है वो साढ़े अपने हाथ में ही होंगी है, है ना। एक्चुअली ना आज मैं जो आ रही थी ना इस ऑफिस आ रही थी और आकाशवाणी के विड़े आ रही थी तो उस टाइम पर मैं देखा कि एक लड़का जिहड़ा आ इन्नी तेज सवेरे सवेरे उन्हें लग रहा कि सड़क खाली आ, मैं तो शू करता भजा लवा, शू करता वो भजा ही रहा सीगा कि अगे जिहड़ा है ना डॉग जिन्हों असी कह सकते हैं एक जानवर जिहड़ा एक

0: Rainbow FM, Rainbow FM,
1: जी हाँ बिल्कुल एफएम रेनबो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से तुसी अपनी दोस्त निशा दे नाल और प्रोग्राम की कहंदा पिया प्रोग्राम कहंदा है कि गल्ला करो इनफॉर्मेशन दियो ओके सो लॉजिक मैं तुहाडी अपने नाल तुहाडी निशा तुसी मेरे नाल हो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते बने हुए हो ना हां जी बने हुए हो चलो ना असी ना की करते हैं जो सानू कुछ भी सोशल मीडिया से वेखन नू मिलता ना रील बन जाने ने या कुछ भी इदा का बन जाता ना तो असं फटाफट ना उदा कर लग जाने कि इदा करके देखते हैं चलो इदा करके देखते हैं ओ हो जूगा इदा हो जू ओहो इदा नहीं होंगे जी हाँ तो अज असी एक यहोजे विषय के उत्ते गल करते हैं जो लगभग हर घर की रसोई के नाल जुड़िया होया दुध की शुद्धता के बारे बिल्कुल कहिंदे ने कि दुध जिहड़ा है ना संपूर्ण आहार है सवेर दी चाह होवे बच्चियां दा गलास होवे जां फिर रात नू हल्दी वाला दुध होवे इस तो बिना काम नहीं जे चलदा नहीं चलदा ना पर सवाल यह है कि जो दुध असी पी रहे हां कि वो सचमुच शुद्ध है अजकल सोशल मीडिया से ना एक टेस्ट काफ़ी वायरल हो रहा है ना मतलब कि लोग कहते हैं कि दुध की एक बूंद जिहड़ी है ना किसी टाइल पर या किसी चिकनी जी सतह के उत्ते पा दिओ जेकर वो हौली हौली वगे तो पिछे सफेद लकीर छड्ड दे तो दुध शुद्ध है पर जी ना छड्डे फिर ये कहती मिलावटी है हुण ये सवाल उठता है कि ये जिहड़ा तरीका 100% सही है मैनू तो नहीं लगता इदा तो फिर सही नहीं है ये तो सही जवाब पता की है जवाब यही है कि नहीं जी नहीं है तरीका सही नहीं है जे इन्ना सौखा होंदा तो लैब बंद हो जाती है ना हर घर के टायल तो टैसटिंग सेंटर बन जाने से होर कि असल में दुध का जिहड़ा विहार कई लोगों के उत्ते निर्भर करता होंदा जिवें कि उस विच फैट किन्ना है दुध ठंडा है जां गर्म है इहदी सतह के उत्ते तुसी टैसट कर रहे हो किन्नी समतल है इसलिए कई बार शुद्ध दुध की वक्रा विहार कर सकता है।

एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ घड़ी दी सुई दे मुताबक 8:03 हो जा रहे हैं। कुछ ही पल बाद प्रादेशिक चैनल तो पंजाबी दे विच खबरां सुनोगे।

श्री माता वैष्णो देवी कटरा वजों चलाया जाएगा। गड्डी नंबर 04606 एतवार 14 जून 2026 नूं शाम 6:15 से कटरा तो रवाना होएगी। अगले दिन सवेरे 6:30 हरिद्वार पहुंचेगी। वापसी विच ए ट्रेन अगले दिन 7 कटरा पहुंचेगी। एक पूरी तरह रिजर्वड रेल गड्डी है। ये रेल गड्डी रस्ते विच मुख स्टेशनां ते रुकेगी, जिन्हां विच शहीद कैप्टन तुषार महाजन, जम्मू तवी, पठानकोट कैंट, जलंधर कैंट, लुधियाना, अंबाला कैंट, सहारनपुर ते रुड़की शामिल ने। मर्दां दे क्रिकेट विच भारत ने कल श्रीलंका विच तिकोणी एक दिन अंतरराष्ट्रीय मैचां दी लड़ी दे पहले मैच विच श्रीलंका ए नूं 8 नाल हरा दित्ता है। ऋतुराज गायकवाड़ ने 101 ते कप्तान तिलक वर्मा ने इस मैच विच 60 दौड़ां बनाईयां। भारत दा अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए नाल होएगा। आखिर च खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज भारत दे सब तो वध समय तक सेवा निभाउण वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए ने। मोदी सरकार दे 12 साल पूरे होण अते प्रधानमंत्री दे सब तो लंबे कार्यकाल की प्राप्ति के संबंध में अज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ NDA की नवी दिल्ली च बैठक। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज तो बुलगारिया ते फिनलैंड दे 2 सरकारी दौरे ते। ते केंद्र ने देश विच देहाती विकास लई 1.25 लाख करोड़ रुपए दे प्रोग्राम दा ऐलान कीता है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 ते होएगा। नमस्कार।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: मुझे मेरे को किया पतोड़
1: नहीं
0: आहा आता पर पहला भी खाता सी ना खड़की नाम से अदा
2: समोसे

टी दौर कागजी सी पर जज्बात देर तक खताते रहने से, है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही गल कही है कि समा जड़ा है ना वो अपनी रफ्तार दे नाल तेज तेज तेज तेज चलता जा रहा है और डिजिटल हो गया है और एक मिनट लगता है चीज़ों को डिलीट करन दा, लेकिन चिट्ठियाँ खत जी है ना वो दिलों के नाल कनैक्शन जोड़ा है स्ट्रोंग ही हुंदा सी। लो जी, एक समय आया कि गाने सुनने का, तो फिर वो गल सुनने गाना सुनने और उस तो बात करते हैं होर भी गल्लां।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत विच जिस सौर क्रांति का आगाज किया सी उसका असर हुण दिखाई देन लगा है। भारत विच एक एक करके 30 लाख तो वध परिवारां दी छत ते सोलर पैनल लग चुके हैं। तुसी वी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।

0: बीते छोटी उते दिल काला
1: किन्ने सोहने गाने सुने ना तुसी अज्ज। एह गीत संगीत जिहड़ा है ना दिल नूं छू जांदा है। पुराने गीत चाहे हिंदी होण चाहे होण पंजाबी दिल ते राज करदे ही करदे ने ना। दोस्त ने बाजार पाई सी एक अजिही चीज़ जिसनूं जिन्ना मर्जी लुटा दिओ वधी जाएगी उह है ज्ञान और प्यार। जिन्ना करोगे वधदा जाएगा। आरे वधे हुए प्यार दे विच प्यार के जिहड़े अहसास ने ना वो मैनू करा रहे ने कि निशा मैसेज अगला फटाफट तू सुना दे किन्ने भेजिया है।
2: निशा जी प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी। मैं हाजिर हाँ दिल अपना पंजाबी यानी कि रेडियो शान पंजाबियों दे विच सुखदेव सिंह लखनपाल बस्ती शेख जनक नगर जलंधर वालों सारे सुनने वाले श्रोतियां नूं प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी।
1: जी सत श्री अकाल
2: मैडम जी, बहुत ही वधिया तुसी प्रोग्राम कर रहे हो।
1: शुक्रिया।
2: तुहाडा अंदाज बहुत प्यारा। अरे वाह, एक कुछ लाइना लेके हाजिर है मैडम जी।
1: जी जरूर
2: करियो।
1: जी जी।
2: कोई वफादार नहीं मिलता, कोई करे साडा इंतजार नहीं मिलता, कोई करे साडा इंतजार नहीं मिलता, सानू साढ़े वर्गा यार नहीं मिलता। किताबां पिछी रह गया है ओ हुण पहला वर्गा प्यार नहीं मिलता। हो जांदे एक्सचेंज पासवर्ड महबूब कोलों इतबार नहीं मिलता। जो रखे दिल विच बका भर के वफा भर के सुखदेव ओनू ही कोई वफादार नहीं मिलता, ओनू ही कोई वफादार नहीं मिलता। धन्यवाद जी, दिल अपना पंजाबी
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम दे विच मैसेज करन दे लई, प्रोग्राम दे विच रौनकां लगांदी। तुहाडी मैसेज, तुहाडियां दुआवां, तुहाडा प्यार ही है जिहड़ा सानू शक्ति सानू ताकत दिंदा है और हिम्मत दिंदा है कि असी इस नूं वध तों वध अगे होर

खूबसूरत अंदाज दे नाल, होर भी खूबसूरत तरीके दे नाल प्रेजेंट करिए और थोड़े तक पहुँचाइए। दिल से दिल तक दा ये सफ़र है और इस खूबसूरत जे सफ़र दे विच दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम दे विच तुहाडे मैसेज जिहड़े है रौनकां ते बहारां जिहड़ियां है ला रहे ने। और अज असीं ढोकला भी खादा, अच्छी अच्छियां चीज़ां सीखियां भी और दोस्तां ने जवाब भी दिते कि आज करे सो कल कर जिहड़ा है उह सिलसिला जिंदगी दे विच चलदा ही रहिंदा है। और यही सिलसिला जिहड़ा है बरकरार रहिंदा है और रौनकां जिहड़ियां है वह लगाई रखता है और साथ निभाण वाले भी मिले और साथ नूं बहुत खूबसूरत तरीके दे नाल प्रेजेंट करन वाले दोस्त भी जिहड़े है मिले ने और बहुत वधिया वधिया गल्लां जिहड़ियां सीखियां। वैसे इदां नहीं हुंदा कि असीं हमेशा असीं ही तुहानूं कुछ ना कुछ इनफॉर्मेशन जिहड़ी है वह दिंदे आ, बल्कि इदां भी हुंदा है कि साडे नाल नाल ना तुहाडे कोलों भी सानूं बहुत कुछ इहो जिहा सीखण नूं जिहड़ा है वह मिलदा है। जदों तुहाडे कोलों बहुत कुछ सीखण नूं मिल जाए तो फिर बैलेंस इक्वल हो जाता है, यानी कि बैलेंस जिहड़ा है वह बन जाता है और यही बैलेंस बरकरार रखने के लिए जरूरी हो जाता है कि कुछ देना जरूरी है। बिल्कुल अज के सफ़र की शुरुआत मैं की थी कि कुछ देना जिहड़ा है बहुत ज़्यादा जरूरी होंदा, चाहे एक मुस्कुराहट दो, चाहे किसी की मदद कर दो, चाहे किसी को हौसला दे दो, तो चाहे किसी की चेहरे के उत्ते जी एक स्माइल है वो तो तुम लै भी आते हो। और ये वादा जिहड़ा ना अज तुसी मेरे नाल कीता भी कि अज असी कुछ देना है किसी भी रूप दे विच, कोई भी रूप होवे, देन दी समर्था जे तुसी दे सकते हो, जिन्नी तुहाडी कैपेसिटी है, जिन्ना तुहानू लगता है कि तुसी किसे नू दे सकते हो दे दिओ। जरूरी थोड़ा तन नाल देना है, मन नाल, तन नाल, किसी भी तरह दे नाल जरूर दे सकते हैं। तो उम्मीद करनी है कि अज इस सफ़र दे विच तुहानू मैं भी बहुत कुछ दिता होएगा और तुहाडे कोलों मैं भी बहुत कुछ लिता होएगा और अज दा सिलसिला जिहड़ा तुहानू किहो जिहा लग्या ये भी जरूर जरूर जरूर दस्सिओ। और प्रोग्राम दे विच बहुत सारे मैसेजेस जिहड़े है साडे कोल आए और सारे मैसेजेस करन वाले दोस्तों का तहे दिलों शुक्रिया अदा करदी हां। ते प्रोग्राम दे विच अगले दोस्त तुहानू लैके जाण वास्ते बिल्कुल तैयार है। प्रोग्राम होएगा गीत बहार पंजाबी तड़का, होर भी मलोडियस करते हुए पल होंगे, यानी प्रोग्राम होएगा मिड डे मालोडीज। और अगे चले जावा और नहीं ज़्यादा अगे नहीं जाती उन्नी देर तक, मैं फिर तुम अवले सिलसिले इंजॉय करो। गीत बहार का सिलसिला लैके अगली दोस्त बिल्कुल तैयार है। फिलहाल अपनी दोस्त निशा नू दे दियो इजाजत, बहुत जल्दी फिर तो मुलाकात होएगी क्योंकि मैं रह नहीं सकती तुहाडे बिना, मैं तो गुजारा नहीं हुंदा तुहाडे बिना। पर एक सोहना जिहा गाना वह जरूर सुना के जावांगी और इस गाने ने सुनने तो बाद तुसी सुनोगे अगला सिलसिला दिल से दिल तक। तद तक रखना अपना ख्याल, गर्मी बहुत है, पानी पींदे रहो और धुप्प विच बिल्कुल नहीं, जे घूमना लोड़ पैन ते निकलो, नहीं तो बैठे रहो अंदर, की करना है। कल वाला सिलसिला फिर मिलते हैं जी, अपनी दोस्त नूं दे दो इजाजत।

हाँ जी, आज तो मैं भी आई हूँ। इतनी गर्मी में आरजे गरिमा आई है जी। सो इट्स आरजे गरिमा तुम्हारे अपने आकाशवाणी एफएम रेनबो पे 102.7 मेगाहर्ट्ज EIR एफएम रेनबो प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं जी। तुम्हारा अपना गीत बहार प्रोग्राम ओ जिथे तुसी 90s 90s तो बाद दे जो भी एरा दे सॉन्ग्स ने ओ इंजॉय कर दियो। तो बहुत सी गल्ला भी जड़िया ने अपना इंजॉय कर दिया नाल नाल। वैसे आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन्ना ज़्यादा आप सवेरे उठ के तैयार क्यों होंगे, इन्ने परफ्यूम लगा लिए, इन्ने सनस्क्रीन लगा लिए, जो मर्जी कर लिए, पर जिवें आप अपने काम ते पहुँचते हाँ सानू ही लगता है कि भाई ये भी साड़ी तरह दौड़ लगा के आया है, या शायद जिम तो आया है, या फिर पता नहीं केड़ी कोई मैराथन है, या पत्थर तोड़ के ऐसा लगता है अपने आप को आप पत्थर तोड़ के पहुंचे हाँ अपने काम ते, बिकॉज इन्नी गर्मी जी स्टार्ट हो चुकी है होनी कि सवेरा जिन्ना भी आप जिन्ना मर्जी लिशक जाइए काफ़ी कुछ जो है वह डैमेज हो ही जाता है साडा अपने आप को प्रैप किया हो, बट स्टिल साड़ी स्पिरिट्स डैमेज नहीं होंगे। आप गर्मी हो या सर्दी आप दौड़ भज करते रहीद तो अपनी लाइफ न स्टेबल करने की कोशिश जी हर दिन साड़ी होंगी है वो सक्सैसफुल होंगे रही है राइट। सो जी बहुत ही अमेजिंग गाने तो बाद नैक्सट गाना सुनना बनता है बिकॉज मेरी जो नज़र है गाने पर है तो आई एम जस्ट गोना क्लिक दिस सॉन्ग सो दैट थोड़े तक पहुँचे। सो बहुत ही प्यारा गाना सुर फिल्म तो आ भी जा लकी अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज़ के। स्टे ट्यून्ड प्रोग्राम गीत बहार बने रहो विद मी आरजे गरिमा।

सुर फिल्म तो गाना एंजॉय किया तुसी इन प्रोग्राम गीत बहार विद मी आरजे गरिमा ओनली ऑन 102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम रेनबो. सुर 2002 दी ओ फिल्म है जिदे विच एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड एंड स्टार सिंगर लकी अली ने डेब्यू किया सी एज एन एक्टर 44 ईयर्स दी एज दे विच. मीन्स एक कहंदे आ ना कि लाइफ दे विच बहुत वार कुछ नवा करन नू दिल करदा है. सो लकी अली ने उस टाइम उही चाहिया ते उन्हां दी फर्स्ट लीडिंग रोल वाली जिहड़ी फीचर फिल्म है वो बन गई सुर, जिद उन्होंने बहुत सारे सुर जो ने वो एक्चुअली बिखेरे बिकॉज काफ़ी म्यूजिकल फिल्म सी. म्यूजिक के एसेंस नाल बनी ए फिल्म सेगी एंड इट वॉज रोमांटिक बट मोर म्यूजिकल मूवी. सो यस, गाने सुपर हिट हुए सी इस फिल्म के, इस करके एक खास ऑडियंस रही इस फिल्म की हमेशा तो. सो ब्यूटिफुल सोंग यू इंजॉयड फ्रॉम दिस मूवी एंड बाकी जी प्रोग्राम गीत बहार दे विच अगला गाना जो है बहुत ही प्यारा बॉर्डर टू फिल्म तो तुसी इंजॉय करो. अगेन नीति मोहन दी आवाज़ दे विच मिथुन एंड विशाल मिश्रा दा एक गाना. एंड यू नो व्हाट, मैं जो तुसी पहले वाला गाना इंजॉय करते पे सी, मैं एक इन्नी सोहनी सैल्फी क्लिक की एंड फिर मैं सोचा कि भाई फिल्टर्स लगाना तो मैं भूल ही गई सी. दैन मैंने मतलब मैं फोटो जो देखा मैं नॉट बैड विदाउट फिल्टर्स की भी फोटो वधिया आ जाती है. इदा ही लाइफ के भी जरूरी नहीं कि हर चीज़ के उत्ते आप फिल्टर लगाइए. कई बार ना ओरिजिनल जो होंगे है बहुत ब्यूटीफुल होंगे है. आप जो एक्चुअल परसोना कित अपना दिखाने ना वो बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. एनी वेज मूविंग ऑन टू द नैक्सट ट्रैक ऑफ द शो गीत बहार प्रोग्राम बने रहो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ AIR FM रेनबो ते विद मी आर जे गारिमा.

वेल जी, प्रोग्राम चल रहा है तो हारा अपना गीत बहार विद मी आरजे गरिमा ऑन 102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम रेनबो. यू नो व्हाट, ऐ जो गर्मी का मौसम है ना, अपने नाल गर्मी के नाल नाल ना बहुत सारे गुड मतलब मूड रिफ्रेशिंग थिंग्स भी लैके आता है. मतलब ओ गर्मिया के दिन अंब कट कट के जो आप खाने एंड मैंगो शेक बना बना के जो पीने हैं, कि सर्दियों में यहोजा लुत्फ मिलता है कितने नहीं ना. सो इस करके हर मौसम का अपना फ्लेवर होता है, हर मौसम की अपनी अहमियत होती है. चाहे जिन्ना मर्जी सानू टॉर्चर करे, पर जो गुड थिंग्स है उन्हें सोचो, उन्हें मतलब करो फील कि बई ए प्यारिया प्यारिया चीज़ा सानू सर्दी दे या दूसरे मौसम दे विच नहीं मिल सकदियां, राइट. सो इस तरीके नाल हर म्यूजिक का अपना एक फ्लेवर होता है, हर सिंगर का अपना एक स्टाइल होता है, हर कंपोजर का अपना एक स्टाइल होता है. एंड एवरी सॉन्ग इज different and every song is so soothing when you are listening to program Geet Bahar. Oh, we tohade apni Akashwani FM Rainbow te. So RJ Garima, thode naal, stay tuned.

सनम रे फ्रॉम दैट टाइटल ट्रैक तो एंजॉय किया आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा जी तो हाडा अपना गीत बहार विद मी आरजे गरिमा 2016 दी बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म सी दिव्या खोसला कुमार जो कि ऑफ कोर्स टी सीरीज दी मालकी

लम्हे फिल्म तो गाना एंजॉय किया तो आकाशवाणी एफ एम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा गीत बहार विद मी आरजे गरिमा लम्हे मूवी दिस इज एक्चुअली वन ऑफ अ वेरी स्पेशल मूवी ऑफ यश राज इस फिल्म दे विच सी श्रीदेवी अनिल कपूर एंड अनुपम खेर की भी काफ़ी वधिया भूमिका सी अनिल कपूर के फ्रेंड बनी हुई सी एंड वैजयंती माला की भी बहुत अहम भूमिका सी बट जो लव रोमांस है अनिल कपूर ते श्रीदेवी का वो काफ़ी यूनीक सीगा पता है क्यों क्योंकि इस फिल्म दे विच एज गैप दिखाया गया सीगा श्रीदेवी 21 साल का दिखाया गया सीगा एंड अनिल कपूर तो 21 साल छोटा मतलब एज गैप 21 ईयर्स का दिखाया गया सी बिटवीन श्रीदेवी एंड अनिल कपूर मतलब एक्टर एंड एक्ट्रेस सो उस टाइम सोसाइटी वॉज नॉट दैट मॉडर्न कि वो इन्ने वे एज गैप यू नो बेयर कर सके एंड इस तो इलावा जो एज गैप है वो बिकॉज की है ना कि पहले फिल्म जो स्टोरी सीगी उहदे विच जो श्रीदेवी है वो अनिल कपूर तो काफ़ी वड्डी हुंदी है कुछ 10-15 साल बट दैन श्रीदेवी जो है उहदा करैक्टर जो है मतलब इस तरीके का हुंदा है कि वो फिल्म दे विच दिखाया जाता कि वह एक्सपायर हो गई तो उहदी अगों बेटी हुई जो कि हूबहू श्रीदेवी वर्गी सी सो उहनूं मेन करैक्टर अनिल कपूर नाल प्यार होया सो इस तरीके नाल दोनों ही पासों एज गैप दिखाया गया सोसाइटी दे माइंड विच ऑडियंस दे माइंड दे विच खिचड़ी पक गई कि भई इनू आपां किवें एक्सैप्ट करिए पर जिन्होंने पसंद किया इस फिल्म नू उन्होंने दिलों में हले तक है एंड हौली हौली जो फिल्म टीवी ते आई तो ऑफकोर्स ऑडियंस ने हौली हौली जिवें समा बीतता गया इस फिल्म नू बहुत ही ग्लैडली एक्सैप्ट करना शुरू कर दिता सो इस करके लम्हे बन गई एक बहुत ही प्यारी फिल्म जिन्हें कि अपना एक यू नो बॉलीवुड विच एक अलग ही एक मार्क जो है वो छड़िया सो such a beautiful film it was Lamhe and moving on to the next track because sade program de Lamhe vi holi holi karke bahut hi beautifully beete de paye ne RJ Garima nal bane ro in program Geet Bahar FM Rainbow te next track enjoy karo stay tuned

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज भारत के सब तो वध समय तक सेवा निभाने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए ने। श्री मोदी ने 26 मई 2014 नूं अहदे दी सहुं चुकी सी। मोदी सरकार दे 12 साल पूरे होने ते प्रधानमंत्री दे सब तो लंबे कार्यकाल दी प्राप्ति दे संबंध च अज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ एनडीए दी नवी दिल्ली च बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज तो बुल्गारिया ते फिनलैंड दे दो दिन सरकारी दौरे ते होणगे। केंद्र ने देश विच देहाती विकास लई 1.25 लाख करोड़ रुपए दा प्रोग्राम दा ऐलान कीता है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 31 स्टार्टअप्स अते उना दे संस्थापकां नूं 1 करोड़ रुपए तो वध दी सीड ग्रांट वंडी। पंजाब विच झोने दी लुआई अते तीजा पड़ा कल तो आरंभ हो गया है। पंजाब दे ट्रांसपोर्ट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जलंधर ते लुधियाने तो दिल्ली दे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक चलन वालियां 5 नवियां सुपर इंट्रीगल वोल्वो कोच बसां नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। अमृतसर देहाती पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियां नाल सांझी कार्रवाई दौरान सरहद पार बैठे संचालकां नाल जुड़े दो व्यक्तियों नूं गिरफ्तार किया है ते दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए ने। पंजी पातशाही साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पुरब मौके पाकिस्तान स्थित इतिहासिक गुरुधामा के दर्शन करने के लिए अज 541 श्रद्धालुओं का जत्था श्रोमणी कमेटी के मुख दफ्तर तो पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। ते क्रिकेट विच ऋतुराज गायकवाड़ के सैकड़े की बदौलत भारत ए ने दंबोला च तिकोणी एक दिन अंतरराष्ट्रीय मैच की लड़ी के पहले मैच विच श्रीलंका ए नूं 8 दौड़ा नाल हराया। एसएन एफएम न्यूज़ हेडलाइंस ते आओ हुण सुंदिया प्रोग्राम पंजाबी तड़का। सुंदे रहो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो।

0: मैं मोंजा था उनके ही प्रोग्राम पंजाबी तड़का शुरू हो चुका है आज गरिमा भी आ चुकी है तुम्हारी अपनी एफएम रेनबो ते हैगी ऑफ कोर्स और ना पिछले एक घंटे तो हैगी बट इस प्रोग्राम दे विच वी फॉर वन आर बनी ही रहेगी सो सारे पहले कॉलर दे नाल अपन गलबात करिए ते प्रोग्राम नु अपा आगे बताइए हेलो
1: हेलो
0: सत श्री अकाल जी कौन बोल रहे हो
1: संदीप
0: जी की हाल चाल ने तुहाडा गल्ला भी करो बहुत सारी बिकॉज़ प्रोग्राम दा नाम है पंजाबी तड़का स्टे ट्यून टू एफएम रेनबो

0: सो जी, प्रोग्राम चल रहा है तुहाड़ा अपना आकाशवाणी एफ एम रेनबो ते पंजाबी तड़का आर जे गरिमा दे नाल। सो अगले गाने वाल रुख करन तो पहले आप ऑफकोर्स साडे कॉलर वाल तो रुख करिए, क्योंकि उही तो दसनगे कि केड़ा सुनना है अगला गाना। हैलो
1: हेलो बेटे, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: प्रवीण बोल रहा, गोपालनगर जीवन का।

0: 102.7 MHz Akashwani FM Rainbow Teji program chal raha toda apna Punjabi tadka RJ Garima de naal. Hello.
1: Hello madam ji, namaskar.
0: Namaskar ji, kon bol rahe ho?
1: Madam ji, main Jang Bahadur Paragur ka Jalandhar ji.
0: Okay ji, Jang Bahadur ji, ki hal hai? Bade samay baad tusi call lagayi hai.
1: हाँ जी मैडम, बस काम दे थोड़ा बिजी रहता सी।
0: अच्छा ठीक,
1: मैं मैडम जी आले ट्राई करके देख लेने हैं।
0: अच्छा अच्छा, साडी उडीका करदे सी तुसी? हम
1: आज लागी तुसी आज कोल लागी।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, होर सुनाओ की?
1: हाँ जी मैडम, काम कर रहे हैं तो तुम्हारा प्रोग्राम सुन रहे हैं जी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, केड़ा गाना सुनोगे फिर आज?
1: तुसी गुरदास मान दा गिद्दा सुना दो।
0: ठीक है जी, थैंक यू सो मच जंग बहादुर जी कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू।
0: ओके जी, सो बड़ी ही प्यारी है कॉल एंड बहुत ही शॉर्ट क्रिस्पी कॉल एंड बहुत ही प्यारी कॉल। मतलब कुछ लोग होंगे ने ना कि तुहानू बस दस जाते हैं कि आप बहुत खुश हाँ कि तुम आए हो, जिमें कि आप किसी के घर जाने है ना, आप किसी के घर जाइए तो सानू पता लग जाता है कि साढ़े आने पर सामने वाला खुश होया है या फिर थोड़ा जहा शॉक हो गया कि आ गए आप तो आराम करते पे सी। हाँ एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नैक्सट ट्रैक है जरा जंग बहादुर जी ने प्ले करवाना है, वो आप प्ले करिए गुरदास मान जी का, तो उस तो बाद फिर आप अगले जो कॉलर ने उन्होंने भी गलबात करनी है। सो प्रोग्राम का नाम पंजाबी तड़का है। वैसे इस गाने तो बाद आप छोटा जहा एक कमर्शियल ब्रेक, उस तो बाद फिर बाकी अगों का कार्य आप जारी करा। यू स्टे ट्यून टू FM रेनबो, आरजे गरिमा है तुहाड़े नाल। गिद्दा पाइए जी गिद्दा।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: दिशा स्कीम दे टैली लॉ न्याबंधो कानूनी साक्षरता ते जागरूकता प्रोग्राम नाल जुड़ो। कानूनी मदद टैली लॉ ते टोल फ्री नंबर 1-44-54 ते वेबसाइट www.tallylaw.in तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: ए, मेरा छोटा भरा है ना, बहुत शरारती है। कॉलेज विच मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा नु दिखाउंदा सी। कल मैं लाइट ते बिल ते जीरो अमाउंट वेखी। मैं सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किता होवेगा, नहीं तो जीरो बिजली बिल किवें पॉसिबल है। पूछया ते आखन लगा, वीर जी सब ऊपर वाले दी मेरे सोलर पैनल है ना। मैं क्या, ओहे ठीक है पुत्र।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़न लई रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: छेती गल करते हैं जी, स्टे ट्यून्ड।

0: 102.7 MHz आकाशवाणी FM रेनबो तेजी प्रोग्राम चल रहा थोड़ा अपना पंजाबी तड़का सो गल करिए अपन नेक्स्ट हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी कौन बोल रहे हैं
1: मैं अवतार सिंह
0: हां जी
1: अवतार सिंह
0: अवतार जी सत श्री अकाल की हाल चाल थोड़ा
1: मैं तो पहलो बुलाइए
0: पहली बार तुसी कॉल लगाई है
1: 90 साल बाद
0: बहुत वधिया रेडियो बहुत पुराना जुड़े हुए ठीक है अवतार जी बहुत वधिया लगे गाना केड़ा सुनोगे तुसी डॉलर वर्सेस रोटी सुनना चाहते हो ठीक है थैंक यू सो मच कॉल करने दे लई चंगा जी सत श्री अकाल ते एदा ही तुसी कॉल लगांदे रहो बहुत ही मैनू एदा लगदा कि हुण तो लगेगी तुहाडी हुण तो लग्या करेगी हां जी
1: होर गल कहनी सी थोड़ा इथो नाना जदो करना
0: आ हां जी
1: जरा चार्जिंग करना नहीं
0: हेलो सो एनीवेज डॉलर वर्सेस रोटी ये गाना जो है आप सुनिए सुनते रहो आकाशवाणी FM रेनबो ते प्रोग्राम तुहाडा अपना पंजाबी तड़का

0: 102.7 MHz Akashwani FM Rainbow Teji program chal raha hai toda apna Punjabi tadka. Hello.
1: Ho sake to lota kisi bahane se kyunki meri duniya bikhar gayi hai mere dost tere chale jane se. Madam ji namaskar.
0: Namaskar ji.
1: Satish Kulyani Dilkushan Market Jalandhar to bol rahe hain.
0: Satish Kulyani ji, aapka dost aapse milne aaya tha aur wo chala gaya, isliye aapne ye sher bola.
1: बिलकुल
0: बिलकुल हर रिश्ते करके तो दोस्ती लभदे आ बिकॉज बहुत अहम
1: दोस्त मिलने किस्मत नाल ही बहुत वड़ी किस्मत अच्छी होए तो अच्छा दोस्त मिलेगा नहीं तो अब तक तो जो भी दोस्त मिले सब बेवफा मिले
0: ओए होए होए होए आप वफाएं निभाते रह गए वो बेवफा निकल गए वाह
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हर कोई ऐसा ही कहता है चलो जी आओ फिर गाना दसो केड़ा सुनोगे आज
1: मैडम जी आप आए प्रोग्राम में बाहर आ गई
0: शुक्रिया जी
1: बड़ी देर ना तुम आयो
0: इसलिए तो आपकी कॉल आ गई
1: तो ज्यादा स्वागत कर रहे हैं जी
0: थैंक यू
1: जी निकलो सोने हो बार बहुत गर्मी है पसीना आएगा तो मेकअप खराब हो जाना जी
0: इस करके थोड़ा सनस्क्रीन लगाओ तो निकल जाओ सारे

FM Manix 2.7 MHz Akashwani, FM Rainbow Te Aao Sundiya, FM News Headlines. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सब तो वध समय तक सेवा निभाने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री

42.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा अपना होम स्वीट होम। तो साड़ियाँ जिहड़ियां लवली लेडीज़ ने जदों किचन क्वीन बनदियां ना ते उन्हां नूं कहना चाहिए बई माई किचन माई रूल्स, नहीं पीने वह जे शरबत जिद बहुत सारे एडिड फ्लेवर्स ने, नहीं पीने वह जिया कोल्ड ड्रिंक्स जिन्हों पी के इन्ना ज़्यादा साड़ी बॉडी दे बॉडी नू डैमेज होंदा है, मतलब एक्सेस जनू पीओ तो कदे कदाएं पार्टी विच दैट्स ओके, बट गर्मियां है मतलब है थोड़ी ना कि आप शरबत तो शरबत गटके जावे कोल्ड ड्रिंक पीए जावे, ना बिल्कुल नहीं। रिसर्चर्स भी कहते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक है वो जे आपां ज़्यादा पीवीए ज़्यादा मात्रा दे विच साड़ी पैन क्रियाज जो है उस उत्ते बहुत ही बैड इफेक्ट जो है दिंदी है, और ये बहुत सारे बैड इफेक्ट कोल्ड ड्रिंक्स दे हुंदे ने, सो इस करके उन्हों एक्सेस मात्रा विच नहीं पीना चाहिए। एंड सैकेंडली जिहड़े शरबत हुंदे ने उहदे विच बहुत सारे एडिड फ्लेवर्स ने, ठीक है, तो उन्हों थोड़ा जिहा अवॉइड करो।

102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम रेनबो ते जी प्रोग्राम जो है वो चल रहा तो हाडा अपना होम स्वीट होम। सो होम स्वीट होम दे विच जो तो भी आप साथ जदी गल करिए हर कोई जो है नोटिस करता है सिर्फ थोड़ा ड्राइंग रूम ही नहीं, थोड़ा डाइनिंग हॉल नहीं, थोड़ा मेन हॉल नहीं, बल्कि थोड़ा वॉशरूम एंड थोड़ी किचन भी। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि किचन या ओपन है तो ऑफकोर्स सब कुछ सामने दिखता है, तो हमें बिल्कुल प्रॉपर सेट करके रखनी होती है। मतलब कोई भी सामान जो है इधर उधर तुसी अफोर्ड कर ही नहीं सकते बिकॉज यू आर हैविंग एन ओपन किचन। ओके एंड जे क्लोज भी है तो भी किचन का जिन्ना सामान जो है सॉर्टेड रहेगा, हर चीज़ अपनी जगह होएगी। मतलब आप इधर उधर नहीं रखांगे, जिहड़ी चीज़ जित्थों है उत्थे ही चक के रखांगे एंड प्रॉपरली उत्थे थोड़े थोड़े दिनों बाद डस्टिंग होंदी रहेगी। सो ऑब्वियस जी गल है साड़ी किचन चमक उठेगी। बहुत सारिया जिहड़ियां लेडीज़ ने उन्होंने बहुत मतलब वो कुक भी नहीं कर सकदियां जो तक उन्हां दी किचन उन्होंने सॉर्टेड ना मिले। सो अजिहियां लेडीज़ दे लई एक होर चीज़ है कि जे तुसीं अपनी रसोई दे विच कुछ इदां दे वॉल हैंगिंग लगाओ जो कि तुहाडी परसनैलिटी नूं रिप्रजेंट करदी होवे तां क्या ही कहने। फॉर एग्जाम्पल जे तुसीं बहुत टेस्टी फूड बना दे हो, लोकी तो हाँ बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट भी कर दिया, तो तुसी अपने किचन दे विच लगा सकते हो किचन क्वीन दा एक वॉल हैंगिंग। मतलब वो तो लिखा होएगा किचन क्वीन, हालांकि कोई तुहानू गिफ्ट करे तो उन्हें ज़्यादा वधिया लगेगा किसी ने बहुत तारीफ की है किचन क्वीन दा ए वॉल हैंगिंग दिता है। या फिर बहुत सारी लेडीज जो है उन्होंने मैं मतलब किसी दे मैं घर गई सी तो उन्होंने अपनी रसोई दे विच लगाया होया सीगा माई किचन माई रूल्स। ओके एंड किसी ने जो एक वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि हमेशा ही कन्फ्यूज रहती है कि भी मैं की बनावा, मतलब मैं खाने दे विच की बनावा, सो इस करके और उन्हें प्रॉपरली अपने वॉल हैंगिंग के उत्ते लिखा होया आज खाने में क्या बनाऊँ सो दैट थले एक नोट भी है सो दैट जिन्हें जो खाना है वो अपने आप ही उत्ते लिख जाए एंड फिर वो डिसाइड कर पाएगी। मतलब सारिया की सहमति के नाल इको डिश बननी है, नहीं कि हर कोई अपना अपना लिख जाए, सारिया की आपसी सहमति दे विच उत्ते लिखा जाएगा, फिर नेक्स्ट डे वो जी सब्जी है या दाल है या राजमा है जो भी बनना है वो बनेगा। सो आई फाउंड इट ए रियली नाइस आइडिया। वैसे एक चीज़ है, बहुत कन्फ्यूजन रहती ही रहती है लेडीज़ नूं, मतलब बेचारियां लेडीज चैट जीपीटी को पुछदिया ने अजकल सवेरे उठ के कि अज मैं की बनावा सब्जी दे विच बेचारा चैट जीपीटी भी इन्ने सारे ऑप्शन दे देता है कि दिमाग होर कन्फ्यूज हो जाता है। फिर चैट जीपीटी को पुछो एक कोई चीज़ दस एंड चैट जीपीटी भी फिर बहुत सारिया ऑप्शन दसदा है कि थोड़ी पुछता है, पूरे क्वेश्चन पुछता है थोड़ी फैमिली में किनू की पसंद है, ये है वो है। मतलब चैट जीपीटी भी साढ़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे सकता कि आप अज रोटी पानी च की बनाइए, इन्नी कन्फ्यूजन होंगी है। उतनी समरजेशन मिलदियां भी लै दे कि कुछ ही सब्जियां ने, सब्जियां की बहार तो आती नहीं जिम्मे विंटर्स के आती है। सो चलो एनीवेज फिर भी आप मैनेज करीदा है हस के मुस्कुरा के, राइट। एनीवेज होर भी बहुत सारी गल्लां करांगे साढ़े घर दियाँ साढ़े ब्यूटी दियाँ। तो इस तो अलावा गर्मियों के एक इदा की मैजिकल चीज़ है ना साड़ी रसोई के जो कि बहुत सारिया चीज़ा दे लई काम आ जाती है। कि चीज़ है वह मैं तुम दसागी आफ्टर दिस ट्रैक। पठान फिल्म का गाना इंजॉय करो। प्रोग्राम होम स्वीट होम बने रहो विद मी आरजे गरिमा ऑन एफएम रेनबो।

ओए होए होए होए, क्या गाना तुसी एंजॉय किया तुहाड़े अपने प्रोग्राम होम स्वीट होम विच विद मी आरजे गरिमाली ऑन एफएम रेनबो। यू नो व्हाट, गर्मियां दे विच साडी रसोई दा जो पठान है, मतलब जो स्टार है, वह की हो सकता है जो कि सानू तरोताज़ा भी रखे, सानू ठंडा भी रखे। बहुत सारी चीज़ां ने, रायते ने, छाछ है, व्हाटएवर, पर है जो पुदीना है ना, दिस इज़ रियली रियली मैजिकल। पुदीने के फायदे पता किन्ने हैं, मतलब गर्मियां के मौसम के जी छोटी जी चीज़ है वह बहुत ज़्यादा राहत दिंदी है। पुदीना सिर्फ चटनी का स्वाद ही नहीं होंदा, मतलब लाइक सेहत लई इन्ना फायदेमंद है ना, इन्ना फायदेमंद। जिस किसी नूं ब्लोटिंग हुंदी है, मतलब खाना खाने नाल थोड़ा जा यू नो पेट फुल जाता है, उहदे लई काफ़ी मददगार है पुदीना, बिकॉज पुदीना डाइजेशन दे विच हेल्प करता है। पुदीना काफ़ी हेल्प करता है डाइजेस्ट फूड नूं फटाफट डाइजेस्ट करन दे विच, इस करके कुछ लोग पुदीने का पानी भी पीते हैं। सो क्यों ना पुदीने की चटनी नूं आपां शामिल करिए, एंड बिकॉज इहदी जिहड़ी तसीर है यू नो ठंडी है, सो ऑब्वियसली बॉडी नूं रिफ्रैश रखन दे विच काफ़ी मददगार हुंदी है। ते पुदीने दे विच इन्नी ज़्यादा शक्ति है ना कि लाइक इट्स रियली अमेजिंग। ते खुशबू तो उहदी वैसे भी बहुत ज़्यादा चकवी हुंदी है। नाओ आपां किस तरीके नाल पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रसोई दे विच, देखो जिन्नी भी आपां ग्रेवी वालियां सब्जियां बनांदे आ, जिवें आलू मटर है, उहदे विच मतलब उहदे नाल तां बहुत ही ज़्यादा टेस्ट वधिया हुंदा है पुदीने दी चटनी दा। ओके, सो ग्रेवी दे विच भी मिलाया जा सकता है, जिवें कि यू नो पनीर बटर मसाला होवे या फिर आलू की सब्जी होवे, इहदे विच एक चम्मच चटनी पाओ तो स्वाद बिल्कुल टेस्ट चेंज ही हो जाता है। इहदा हरा रंग जो है, पुदीने की जिहड़ी खुशबू है, मतलब दोनों मिलकर लजीज़ बना देंगे ने ग्रेवी वाली सब्जी, मतलब खाने में लजीज़ बना देंगे ने। सो मैरीनेशन भी करनी होंगे आप बहुत सारी चीज़ा, जो पनीर टिक्का बनाना है या कोई भी चीज़ बनानी है, मैरीनेट करन वाला कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं, सो हरी चटनी आप ऐड कर सकते हैं। दही ते हरी चटनी मिला के आप थोड़ा जा

0: झुमका।
1: हाँ जी लव्या कहने चुमका के नहीं लव्या, आकाशवाणी एफएम रेनबो पे प्रोग्राम चल रहे होम स्वीट होम विद मी आरजे गरिमा। आज है नेशनल मसाला डे, मसाले डे। साडे जिहड़े मसाले ने भाई गॉड दी कसम, सब मसाले की खुशबू आ गई जिवें मैं कहा नेशनल मसाले डे। रसोई के मसाले सो साडी जिंदगी है। एक दाल उहदे विच लगदे ने अलग अलग तड़के मसालिया दे। एनीवेज हुण आपां एक्चुअल मसालिया दी जे गल करिए ना, तां इंडिया दे मसाले कमाल दे ने। हल्दी ओ मम्मी वर्गी जे सट लग जाए तां हर बीमारी दा हल, लगा लो बेटा सब ठीक हो जू। मिर्च ओ दोस्त जिहड़ी कि हर गल ते एक्साइटमेंट पा दे, मतलब ड्रामा क्वीन यू नो। थोड़ी जी होवे तां मज़ा, ज़्यादा हो जाए तां अखां विच हंजू, हैशटैग सज़ा। सो जीरा जो है ना, वो शांत सुभाव वाला बंदा है ना जीरा, जिहड़ा ज़्यादा शोर नहीं मचाता पर बिना उहदे स्वाद सब कुछ अधूरा ही लगता है। तो जे गर्म मसाले की गल करिए, ओए होए होए, तो पूरी पंजाबी फैमिली वर्गा हुंदा जी गर्म मसाला, सारे इकट्ठे आ जाओ तो माहौल बन जाता है। सो यस, दैट इज सो इंपोर्टेंट, गर्म मसाला। सो बस सच्ची दसीए, इंडियन मसाले सिर्फ जिहड़े सारी रोटी पानी उहदा स्वाद नहीं वधांदे, इह सारी संस्कृति, साडे घरां दी खुशबू ते साडियां यादां दा हिस्सा हुंदे ने। ते जदों रसोई विच तड़का लगदा है ना, तां लगदा है कि घर सच्ची

102.7 MHz Akashwani FM Rainbow te tusi sun rahe si program Home Sweet Home te aao hun sunde ha FM News Headlines. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज भारत के सब तो वध समय तक सेवा निभाने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए ने। श्री मोदी ने 26 मई 2014 नूं अहुदे दी सहुं चुकी सी। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने ते प्रधानमंत्री के सब तो लंबे कार्यकाल की प्राप्ति के संबंध में अज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ एनडीए की नवी दिल्ली च बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज तो बुल्गारिया ते फिनलैंड के दो दिन सरकारी दौरे ते होणगे। केंद्र ने देश विच देहाती विकास लई 1.25 लाख करोड़ रुपए के प्रोग्रामा का ऐलान किया है। पंजे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पूर्व मौके पाकिस्तान स्थित इतिहासिक गुरुधामा के दर्शन करने लई अज 543 श्रद्धालुओं का

102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम शुरू हो चुका है मिड डे मेलोडीज आरजे गरिमा दे नाल एंड पिया तुसी नैना लागे रही लता मंगेशकर दा गाना प्रोग्राम दे विच लता जी रफी साहब किशोर दा आशा जी सो एना दे किसी गाने तो जदों शुरुआत हुंदी है ना ते पता लग जाता है कि जी मिड डे मेलोडीज प्रोग्राम शुरू हो गया है ना सो इन्हां सारियां

सो एक गाना सुन के ना मैनू हरिद्वार, ऋषिकेश दी जो धारा है, गंगा दी जो नदी है, वो फील होनी शुरू हो गई यार नो सडनली. आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है तो हाडा अपना मिड डे मैलडीज विद मी आरजे गरिमा. बहुत ही इंटरेस्टिंग गल्लां ने इस फिल्म दे नाल जुड़ियां हुई. 1985 दी ब्लॉकबस्टर फिल्म राम तेरी गंगा मैली दा ए टाइटल ट्रैक. निर्देशन कीता सी इस फिल्म दा राज कपूर ने. बाय गॉड दी कसम, शानदार संगीत, शानदार विजुअल्स एंड कहानी दे लई अज इस फिल्म नूं याद कीता जांदा है. नाउ ए जिहड़ा गाना है ना पहले ही बन चुकिया सी, मतलब फिल्म दे जिहड़े गाने ने ओह पहले बन चुके सी, फिल्म दी जिहड़ी शूटिंग है ओह बाद दे विच होई सी. सो द थिंग इज कि राज कपूर दा ड्रीम सीगा, ड्रीम प्रोजेक्ट सीगा राम तेरी गंगा है फिल्म. ए फिल्म दा जो थॉट है राज कपूर दे दिल दे विच, 1959 दे विच एक फिल्म सी जिस देश में गंगा बहती है, उसकी शूटिंग के दौरान ही आइडिया आ गया सीगा फिल्म दा. सो गाना पहले ही बना दिता गया सीगा, एक थॉट आया राज कपूर दे जहन दे विच, एंड उस तो बाद है इन्ना वड्डा जो मास्टरपीस है राम तेरी गंगा ए बन गया. नाउ इस फिल्म दे विच जो मंदाकिनी एक्ट्रेस है उसकी खोज किवें हुई सी, राज कपूर अपनी बेटी संजना नू संजना कपूर नू लॉन्च करना चाहते सी, बट संजना वॉज नॉट इंट्रस्टिड फॉर द मूवीज़, तो इस करके फिर उन्होंने ऑडिशन दिते तो मंदाकिनी नू जो मुख्य भूमिका है वो गंगा इस करैक्टर के लिए चुनिया गया. एंड राजीव कपूर इस फिल्म दे विच सी. राजीव कपूर का करियर बहुत ही शानदार इस फिल्म तो स्टार्ट होकर इस फिल्म तक ही खत्म हो गया, बिकॉज राज कपूर के सब तो छोटे जो बेटे ने राजीव कपूर उन्होंने पहली तो उन्होंने करियर की एकमात्र ब्लॉकबस्टर फिल्म सी है राम तेरी गंगा मैली, राम तेरी गंगा आई मीन दिस इज द टाइटल ट्रैक. ओके आई मीन टाइटल ट्रैक तो हट के जरा फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा, बस यही है. सो बेसिकली बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल एंड बहुत ही आइकॉनिक फिल्म बन गई, एंड उसी फिल्म का एक गाना तो सी इंजॉय कर ही लिया है. एंड इस करके मैं सोच रही थी हूँ मिड डे मैलडीज प्रोग्राम के अगला गाना जो है प्ले किया जाए, बिकॉज उस गाने के बारे में तो आप गल करेंगे ना. आई मीन मिड डे मैलडीज प्रोग्राम ही अपने आप एक जादू है, एंड इस जादू में बस एक्सपीरियंस करते रहो. स्टे ट्यून टू एफ एम रेनबो आर जे गरिमा थोड़े नाल है.

आज वो सिंगर्स हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आवाज़ ही तो उनकी पहचान है ना। उनकी आवाज़ से ही तो हमको याद रहती हैं बहुत सारी कहानियाँ। आकाशवाणी FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है जी, तो हाड़ा अपना मिड डे मेलोडीज विद मी RJ गरिमा। सो ये फिल्म सी किनारा, जो गाना है किनारा फिल्म, तो तुसी सुनिया 1977 दी फिल्म किनारा। सिंगर्स लता मंगेशकर एंड भूपिंदर सिंह एंड म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ कोर्स RD बर्मन साहब, लिरिसिस्ट गुलजार साहब। एंड इस फिल्म दे विच सी

किनारा फिल्म दे विच जितेंद्र, हेमा मालिनी एंड धर्मेंद्र. सो बहुत सारिया कॉन्ट्रोवर्सीज भी सीगियां बिकॉज गुलजार साहब ते कुछ एलिगेशंस भी लगे सी, उन्होंने स्टोरी चुराई है, उन्होंने यू नो लिरिक्स चुराए ने वट एवर, बट सॉन्ग इज सच ब्यूटिफुल सॉन्ग. मतलब कि हूँ तक लता मंगेशकर जी की जो गल करिए सब तो पहला थॉट दे विच यही गाना आता है कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है अगर याद रहे. सो जी मेरी आवाज़ पहचान है. एंड फिलहाल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक ऑफ द शो प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ विच अगला गाना जो है किशोर तिलता जी की आवाज़ दे विच. एंड रेडियो इज सच मीडियम कि आवाज़ की दुनिया जो है एक ऐदा दा मैजिकल स्पेस है जिथे कि यू नो गाने ने ते वो अलग अलग आवाज़ा भी इन्ह गाने विच सुनन नू तुहानू मिलदियां ने जो कि माइक दे थ्रू एंड रेडियो वेव्स दे थ्रू तुहाड़े तक पहुँचदियां ने. सो पूरा दा पूरा आकाशवाणी ही मैं कह सकती हाँ कि एक जादू है ना. सो मिड डे मेलोडीज़ विच अगला गाना इंजॉय करो. स्टे ट्यून टू FM रेनबो.

FM 102.7 MHz आकाशवाणी FM रेनबो तेजी प्रोग्राम चल रहे तो हाडा अपना मिड डे मैलडीज टाइम हो चुका एक छोटे जे कमर्शियल ब्रेक का उस तो बाद आप मिड डे मैलडीज प्रोग्राम जारी रखते हैं स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो

0: ये ब्यूरो रिपोर्ट नाल मैं सरबजीत कौर, आकाशवाणी खबरां जलंधर।
1: सरकार ने राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां लई 95,692 करोड़ दे अंतरिम बजट अलाटमेंट दी तजवीज़ रखी है, जिस नाल मनरेगा तो विकसित भारत रोज़गार गारंटी ते आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी विच सुचारू तब्दीली नूं यकीनी बनाया जा सकेगा। ए एक्ट 1 जुलाई तो देश भर च लागू होवेगा। पेंड विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवीं दिल्ली च राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे पेंडू विकास मंत्रियां नाल इक वर्चुअल मीटिंग तों बाद इसका ऐलान किया।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश च सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों पाइप राही कुदरती गैस पीएनजी की सप्लाई वधा रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनैक्शनों पीएनजी कनैक्शन बदलने की कोशिशां कीतियां जा रही ने। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत जानकारी फैला के आलमी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार अजिहां गतिविधियों खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज तो बुलगारिया ते फिनलैंड के 2 दिना सरकारी दौरे ते ने। विदेश मंत्रालय ने दस्सिया कि बुलगारिया की अपनी यात्रा दौरान डॉक्टर जयशंकर बुलगारिया के चोटी के नेतावां ते विदेश मंत्री नाल मुलाकात करनगे अते विचार वटांदरा करनगे। अफगानिस्तान के कोनार खोस्त अते पतिका प्रांतां विच पाकिस्तानी फौज के हवाई हमलों में 13 लोग मारे गए, जिन्हां विचों ज़्यादातर बच्चे ने। तालिबान के बुलारे ज़ेहुल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करदिया कहा कि इसने कल रात नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर अफगान हवाई खेतर की उलंघना की थी, इस मानवतावादी अपराध से हमलावर कार्रवाई करार दिता है। दक्षिणी फिलीपींस में बचाव टीमों ने कल नुकसानिया इमारतों की तलाशी ली ताजो ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी व्यक्ति इन्हों के अंदर फसया ना हो। एक दिन पहला 7.8 तीव्रता वाले भूचाल च 37 लोग मारे गए, लगभग 500 जख्मी हुए ने, 32,000 तो वध लोग बेघर हो गए ने। दहाकियां च देश च आए सब तो शक्तिशाली भूचाल चो एक बारे अधिकारियों ने कहा कि 4 लोग अजे भी लापता ने, जबकि खोज टीमां संभावी बचे हुए पीड़ितों लिए नुकसानिया इमारतों की तलाशी लै रही ने। आखिर च खास खबर एक बार फिर तो मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने प्रधानमंत्री के सब तो लंबे समय कार्यकाल की प्राप्ति के सिलसिले अज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ की नवी दिल्ली बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज भारत के सब तो वध समय तक सेवा निभाने वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनने ते देश विदेश तो वधाई देने का सिलसिला जारी। सरकार वालों राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों लिए 95,692 करोड़ के अंतरिम बजट अलॉटमेंट की तजवीज़ ते विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज तो बुलगारिया ते फिनलैंड के 2 दिना सरकारी दौरे ते। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे शाम 6:20 ते। नमस्कार।
3: FM बहनिक 2.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM रेनबो ते तुसीं सुन रहे सी प्रादेशिक खबरां। ते आओ हुण जारी रखदे हां प्रोग्राम मिड डे मैलडीज़। सुनते रहो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM रेनबो।

102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा अपना मिड डे मेलोडीज एंड फिलहाल आरजे गरिमा तुहानू कह रही है टटा बवाए अलविदा साइनिंग ऑफ राइट नाउ फिर किसी दिन मिलांगे पर फिलहाल तां इत्थे ही लास्ट ट्रैक जो है इस प्रोग्राम दा प्ले करके मैं तो चली क्योंकि स्टूडियो विच आरजे परमीश इज देयर जो कि अगले प्रोग्राम्स नाल तुहानू एंटरटेन करेंगे एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट ट्रैक ऑफ द शो प्रोग्राम मिड डे मैडिज विच फिलहाल है नाइन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय बाय एंड स्टे ट्यून टू एफएम रेनबो 102.7

हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्यारे सरोतियों की हाल चाल ने, मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। वेल सब तो मतलब सारे नू प्यार भरी सत श्री अकाल प्यारे सरोतियों। वेल वेल मैं आई नो मैं जल्दी आ गया क्योंकि मैं थानू बहुत ज्यादा मिस कर रहा सी क्योंकि मैं कोरिया नहीं गया, इसलिए मैं जल्दी आ गया। ठीक दोस्तों, गल करते हुन अपने तुसी ट्यून इन, वेल तुसी ट्यून इन किया है 102.7 FM रेनबो ते, यह है थोड़ा अपना शो दिला शायर है, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश से थोड़े दिल दी गल सुनन आया हाँ। वाह तुसी भी खुश हो गए होगे कि हाँ साड़ी गल सुनन आया। वाह ते अज दे ना आपा गल करते हैं दिला शायर च ना कि कहिंदे ने दिल अज जिहड़ा शायद कुछ कहना चाहुंदा है, लफ्ज़ां तों बिना भी सब सहना चाहुंदा है, चुप के जड़े चुप दे पर्दियां च लुकिया जड़ा राज अज रेडियो दियां लहरां नाल वहना चाहुंदा है। हाँ जी दोस्तों, कदे कदे ना दिल दी गल ना जुबान तक नहीं पहुँचती ते ओ अध विचकार ही रह जांदी है, ते कदे प्यार दा इजहार, कदे मुआफ़ी, कदे मैं तैनू याद करदा हाँ, पर शायद एक कह के ना गल मुक्की जांदी है। अज वैल इस शो दे विच असीं हुण अधूरे लफ्ज़ां दी ना मुकम्मल करांगे, मतलब अधूरे

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए

0: हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
1: जी,
0: तो आज
1: अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की।
0: जी विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
1: जी।
0: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश, अफ्रीका।
1: लेकिन बात

0: थी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले।
0: जी
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
0: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
1: तो क्या हुआ फिर?
0: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजी जी, अब आप आगे बताइए ना।
1: बताता हूँ बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ।
0: जी
1: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया।
0: जी
1: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की।
0: जी
1: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
0: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
1: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे है। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
0: जी।
1: हैं। फिर क्या होता है विमलेश
0: जी? सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
1: वाह वाह जी।
0: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
1: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
0: जी।
1: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
0: जी।
1: फिर कॉफी परोसी जाती है।
0: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
1: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
0: जी।
1: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
0: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
1: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
0: जी।
1: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
0: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
1: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर यह अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मुलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा,
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो, हम उनसे पूछते हैं। वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ, कहिए।
1: जी, मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी,
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए, 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था।

0: और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
1: अच्छा कमल जी,
0: जी
1: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
0: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
1: ओह

0: ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहां खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहां के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहां प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके,

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
3: गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यही लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें।

0: क्योंकि ये केरल की रहने वाली है।
1: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
0: अच्छा।
1: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है। मतलब ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
2: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
0: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
2: वांडी पेरियार?
0: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
2: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
2: जी,
0: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
2: अच्छा।
0: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
2: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
1: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
0: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुंचती है।
2: अच्छा।
0: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सब का पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
1: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
0: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ संतुलित और खुशहाल जीवन जीने की कला है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर आयु वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, योग फॉर हेल्दी एजिंग यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। उम्र बढ़ना प्रकृति का नियम है, लेकिन स्वस्थ सक्रिय और ऊर्जावान बने रहना हमारे हाथ में है। योग न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है बल्कि मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और जीवन में नई ऊर्जा का संचार भी करता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं योगी गुलशन कुमार। आप एक योग आचार्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच।
1: दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आज हम बात करेंगे आपकी सेहत की, आपकी फिटनेस की यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग पर अपने विशेषज्ञ से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, आप हमें ये बताइए हेल्दी एजिंग किसे कहा जाता है।

0: वृद्धावस्था में स्वस्थ कैसे रहा जाए, और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हेल्दी एजिंग किसे कहा जाता है, तो उम्र का बढ़ना प्रकृति का एक नियम है। बढ़ती उम्र एक खूबसूरत पड़ाव है जिसे योग के माध्यम से ऊर्जावान बनाया जा सकता है। और योग का केवल मतलब ये नहीं होता कि शरीर को कठिन आसनों से मोड़ना, तोड़ना, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। योग का जहाँ तक अर्थ है, अपने शरीर के जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना, अपने शरीर के अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको सक्रिय करना। प्राय ये देखा जाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो शरीर में कुछ समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं का, जिसे हम हेल्दी एजिंग की बात कह रहे हैं, तो हेल्दी एजिंग को पाने के लिए योग एक माध्यम है, और इस माध्यम से हम एक हेल्दी एजिंग की लाइफ को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं।
1: तो योग, जैसे कि आपने कहा, हेल्दी एजिंग के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, तो ये हमारे शरीर को और मन को कैसे स्वस्थ रखेगा? कैसे रख सकते हैं हम इसके ज़रिए?
0: योग के माध्यम से शरीर और मन दोनों, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं, और योग दोनों को स्वस्थ करने का एक माध्यम है। क्योंकि ये कहावत काफ़ी समय से प्रचलित रही है कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। यदि एक शरीर अगर हमारा रोगी होता है तो उसका प्रभाव मन पे भी पड़ता है, और यदि मन रोगी होता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के अलग-अलग भागों पे पड़ता है। मन अगर रोगग्रस्त होता है, मन अगर विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होता है, तो उसका हमारे शरीर के आंतरिक कार्य प्रणाली पे बहुत गहरा दबाव पड़ता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन धीरे धीरे स्लो होने लगता है, और जिसकी व्यक्ति के कारण व्यक्ति अपने आप को शक्तिविहीन महसूस करता है। और जब हम योग से जुड़ते हैं तो योग करने से शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहने लगते हैं।
1: तो वृद्धावस्था की, जैसे कि हमारा आज का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, तो वृद्धावस्था में हम स्वस्थ रहें तो उसके लिए हमें कौन कौन से योग करने चाहिए?
0: वृद्धावस्था में व्यक्ति स्वस्थ रहे उसके लिए सबसे पहले है कि हमारे शरीर के जो जॉइंट्स हैं वो सारे जॉइंट्स हमारे फ्लेक्सिबल हों। हाथों में, उंगलियों में प्राय देखा गया है लोगों को रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाती है, घुटनों में अर्थराइटिस हो जाती है, पैरों में दर्द होने लगता है, कंधों में फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, और इसके अलावा कमर में दर्द रहने लगता है, गर्दन में दर्द रहने लगता है। तो वृद्धावस्था में इन सब रोगों को दूर करने के लिए योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब हम योग की कुछ आसनों का प्रयोग करते हैं, कुछ योग की सूक्ष्म क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, तो शरीर में जो एक बढ़ती उम्र के साथ चेंजेज आते हैं, उन चेंजेज को बढ़ने से रोका जा सकता है, और शरीर को फिर पूर्व अवस्था में, एक जो किसी समय में, किसी उम्र में हमारी एक शरीर की एक स्वस्थ अवस्था बनी हुई रही थी, कभी वो स्वस्थ अवस्था फिर वापस लौटने लगती है।
1: वृद्धावस्था में स्वस्थ अवस्था रहे, इस पर हम बातें और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, उम्र चाहे कोई भी हो, अगर हमने फिट रहने का, स्वस्थ रहने का लक्ष्य बना लिया तो हम उसे ज़रूर पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें आप ये बताइए कि वृद्धावस्था में, जैसे कि अगर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो इनके लिए क्या अलग अलग आसन है, या कोई ऐसा आसन है जो दोनों कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं?
1: कुछ आसन महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, जिनमें से प्रमुख आसन हैं जैसे भुजंग आसन है, ये चाहे महिला है चाहे पुरुष है दोनों ही कर सकते हैं। भुजंग आसन की पद्धति इस प्रकार से है, बहुत आसान है करने का तरीका। इसमें पेट के बल लेट जाते हैं और दोनों हाथ की हथेलियों को कंधों के नीचे रखते हुए सांस भरते भरते गर्दन और चेस्ट को ऊपर उठाते हुए कमर को मोड़ देने की स्थिति का नाम भुजंगासन है। ये महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे युवा हो सभी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त पादहस्त आसन है, ये खड़े होकर आसन किए जाते हैं और दोनों पैर मिला के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होते हैं और फिर दोनों हाथ ऊपर सांस भरते हुए ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे आगे झुकते हुए दोनों हाथों को बिना घुटना मोड़े दोनों हाथ पैर के अंगूठे के साथ टच करेंगे और इसमें कुछ सेकंड रुकते हैं और कुछ सेकंड के बाद फिर दोनों हाथ ऊपर करते हुए वापस आ जाते हैं। ये बाधस्थ आसन है, इसको महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक कटी चक्र आसन है, ये आसन भी पैरों में 2 फीट के लगभग अंतर

0: रखते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ रखते हैं कंधे की सीध में, और फिर दोनों हाथों को लेफ्ट साइड कमर को ट्विस्ट करते हैं, और कुछ सेकेंड ट्विस्ट करके रुकना होता है, और फिर दोबारा सेंटर में वापस आ जाते हैं। ये दाएं और बाएं दोनों तरफ से यदि किया जाए तो ये आसन भी महिला और पुरुष दोनों एक साथ कर सकते हैं।
1: तो क्या यह आसन सुबह खाली पेट करना होता है या पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं?
0: खाली पेट ही आसन किए जाते हैं, और सुबह अगर ये आसन खाली पेट किए जाएं तो अधिक लाभ मिल सकता है, और जिनके पास सुबह कोई ऑफिस वर्क है कहीं पर उनको जल्दी जाना होता है तो शाम के समय भी ये आसन किए जा सकते हैं। शर्त ये है कि दोपहर का खाना 4 घंटे पहले खाया हुआ हो।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम नमस्ते, डॉक्टर साहब नमस्ते। ये लिखते हैं कि मैंने MRI करवाया था, मुझे साइटिका बताया है। मुझे हिप से काफ्स तक पेन होता है, मैं कौन सा योगा एक्सरसाइज करूं? सतीश कुमार, एज है 65 वर्ष और वजन है इनका 95 किलो, रोहिणी सेक्टर 17 दिल्ली से।
0: सतीश कुमार जी, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जब आप साइटिका से पीड़ित हैं, और आसान तरीका है साइटिका पेन से मुक्त होने का, सबसे आसान तरीका योग ही है। इसमें विपरीत हस्तपाद स्पर्श आसन अनेक लोगों पे हमने प्रयोग किए हैं, और उन लोगों ने साइटिका की पीड़ा से छुटकारा पाया है। और इसमें एक ही टांग में कमर रीढ़ की हड्डी से यह दर्द शुरू होता है कुल्ले तक, और कुल्ले से फिर थाइस में, और फिर काफ से पैर तक ये पेन की लहर जाती है। इसके लिए एक आसान आसन, जैसे मैंने बताया कि विपरीत हस्तपाद स्पर्श आसन कर सकती हैं, जमीन पर लेट जाएं और दोनों हाथों को शोल्डर के पैरेलल फैला के रखें, फिर दाहिना पैर आप बाएं हाथ के साथ मिलाने की कोशिश करें। जब दाहिना पैर उठा करके बाईं तरफ लाएंगे तो घुटना सीधा रहना चाहिए, और यदि आपकी उसी टांग में दर्द है तो फिर ये शायद आप अपने आप ना कर पाएं, तो इसके लिए फैमिली के किसी मेंबर्स की सपोर्ट लीजिए, और वो आपके पैर को ऊपर उठाते हुए राइट वाले पैर को लेफ्ट फैले हुए हाथ के पास लगा के कुछ सेकंड रोकें, और कुछ सेकंड रोकने के बाद फिर पैर को वापस ले आना होता है। इसी प्रकार दूसरे पैर से करते हैं। ये विधि अगर 3 से 5 5 बार सुबह शाम अगर की जाती है तो आप पाएंगे कि आपकी साइटिका पेन में काफ़ी आपको 8 10 दिन के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक विश्वास पैदा होता है, और फिर आप कुछ दिन अगर इसको कर लेते हैं 15 दिन 20 दिन तो 80 से 90% साइटिका पेन से छुटकारा मिल जाता है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
2: हाँ जी,
3: कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
2: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी,
2: हाँ
1: आपका
2: जी
1: नाम, आप कहाँ से
2: नमस्ते,
1: कॉल कर रहे हैं?
2: हिम्मत सिंह हरियाणा से बोल रहा हूँ मैम। आपको भी नमस्ते और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
1: नमस्ते जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: GERD की प्रॉब्लम है जी, एसिडिटी ऊपर रिफ्लेक्स हो जाती है, उसके लिए कोई योगा जी?
0: एसिडिटी रिफ्लेक्स यदि आपको हो रही है तो जिन चीज़ों से एसिडिटी आपको खाने से बनती है इस चीज़ का आपको पता चल गया होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं, कॉफ़ी का सेवन करते हैं, तो सबसे पहले तो उनकी मात्रा को कम कीजिए। दूसरा, अपना आहार में बदलाव लाइए। दो प्रकार के आहार हम लेते हैं, एक होता है एसिडिक फूड और दूसरा होता है एल्कलाइन। तो 70% आप एल्कलाइन फूड लीजिए और 30% आप एसिडिक फूड लीजिएगा। एसिडिक फूड में आता है मैदे का बना हुआ सामान है, बेकरी है, बिस्किट्स है और नमकीन है, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। और जितना भी क्षारीय आहार है उसमें गाजर है।

0: है, खीरा है, टमाटर है, ये जितने भी रॉ वेजिटेबल्स हैं इनको आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको ये एसिडिटी की जो शिकायत है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। योग की जहाँ तक बात की जाए तो योग में आप कुंजल क्रिया कीजिए, सुबह खाली पेट 3 से 5 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और आगे झुकते हुए दो उंगलियां अपनी जीभ से थोड़ा सा टच करें, उससे पिया हुआ पानी सारा वोमिट बन करके बाहर आ जाएगा। जैसे ही पानी बाहर आएगा तो आपकी एसिडिटी भी उसमें घुलनशील होकर के बाहर निकल जाएगी। ऐसे प्रतिदिन कुछ दिन कर लीजिए तो डेफिनेटली आपको इससे काफ़ी लाभ मिल जाएगा।
1: एक और श्रोता है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: मैडम,
1: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: उत्तराखंड से रघुवीर जी बोल रहे हैं।
1: हाँ जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: जैसे मैडम ने बताया कि योग से सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि सारी बीमारियां हैं इससे दूर हो सकती हैं, तो मैडम मेरा ऐसा है ना डॉक्टर साहब,
0: जी जी बोलिए
2: मेरा थोड़ा बीपी ज्यादा है, तो
0: जी।
2: मैं एमिडोपीन कोई अंग्रेजी दवाई है तो उससे मैं समझता हूँ कि साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, तो मुझे कौन सा योग करना पड़ेगा? दूसरी बात यह है कि जो स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि योग के साथ साथ दवाई भी खाना चाहिए, कैंसर की बीमारी दूर होती है, तो इस तरह से गलत धारणा भी लोगों के दिमाग में है, तो मुझे यही बताना है कि आप मुझे कौन सा योग करना है, बीपी ज्यादा है।
0: देखिए, ब्लड प्रेशर हाई होना एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ के अंतर्गत आता है, तो यदि आपका जीवन की पद्धति कुछ आपको लगता है कि अगर कुछ गलत चल रही है तो उसको थोड़ा सा बदलाव लाइएगा, और अगर आप अपने आहार में बहुत ज़्यादा सोडियम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप तीखे मिर्च मसाले वाली वेजिटेबल्स लेते हैं या बाज़ार का कुछ इस तरह की ऑनलाइन चीज़ें आप खाना पसंद करते हैं, तो उनको थोड़ा मिनिमाइज़ कीजिएगा। और जहाँ तक योग की बात आप कह रहे हैं कि इसमें देखा गया है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको चंद्रभेदन प्राणायाम की मदद ले सकती हैं। इसमें राइट नोस्टिल बंद करते हुए लेफ्ट नोस्टिल से सांस को भीतर लीजिए और राइट नोस्टिल से सांस को बाहर कर दीजिएगा। इसको थोड़ा सा संयम से कीजिए, जल्दी में और बहुत तेजी में आके मत करें, धीरे धीरे आप लेफ्ट नोस्टिल यानी चंद्र नाड़ी से सांस लीजिए और राइट नोस्टी से धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। ये कम से कम 5 मिनट तक आप कर लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त आप शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं और आप अपने दोनों टीथ को आपस में मिलाइए और टीथ के माध्यम से वायु को मुख के द्वारा भीतर की ओर धीरे धीरे भरिए। पूरा भरने के बाद होठों को बंद कर लेते हैं, फिर दोनों नोस्टी से सांस को बाहर छोड़ दिया जाता है। इस तरह से ये दो प्राणायाम कीजिए, साथ में रिलैक्सेशन करिएगा। जब भी आपका ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ हो तब आप थोड़ा रिलैक्सेशन करें, नीचे लेट जाएं या अपने बेड पे भी लेट सकते हैं, और बेड पे लेटते हुए शरीर को जितना रिलैक्स कर सकते हो अपने आप को ढीला छोड़ते जाओ, ढीला छोड़ते जाओ। और ढीला छोड़ने का क्रम जो है 5 से 10 मिनट तक लगता है, एकदम शरीर ढीला नहीं हो जाता। जैसे जैसे बॉडी आपकी रिलैक्स होती चली जाएगी, आपका जो शूटअप हुआ ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। और इस तरह से आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। और जब भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ हो तब आप राइट करवट ले के लेटे। राइट करवट ले के लेटने से आपकी चंद्र नाड़ी से श्वास प्रश्वास चलना शुरू हो जाती है।

0: ऐसा करने से साइंटिफिकली क्या प्रभाव पड़ेगा कि चंद्र नाड़ी से सांस चलने से ब्लड प्रेशर कैसे कम हो सकता है? इसका सीधा प्रभाव जो है वो हमारी पैरासंपैथेटिक नाड़ियों पे पड़ता है। जब पैरासंपैथेटिक नाड़ियाँ हमारी एक्टिव हो जाती हैं तब हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है, तनाव कम हो जाता है और हम देखा है हमने कि 10 से 15 यूनिट ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। तो आप इनका प्रयोग करके देखिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि इनसे पहले भी एक श्रोता थे हमारे साथ लाइन पे, उन्होंने भी कहा था कि डाइजेशन का इशू है, तो वृद्धावस्था में अक्सर देखा जाता है कि कुछ खाते हैं डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पाचन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं, तो क्या कुछ ऐसे योग आसन हैं कि जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाए, जो हम डेली में कर ले, ईजली खा सके, ईजली डाइजेस्ट हो सके?
0: जो वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें ये देखा गया है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति का जो चलना फिरना है वो काफ़ी कम हो जाता है। 60 इयर्स की एज के बाद प्राय लोगों को देखा गया है, वो बैठे रहते हैं या वो अपने बेड पे लेटे रहते हैं, उन्हें आराम करना ज़्यादा आरामदायक और अच्छा लगने लगता है। बॉडी का डीएक्टिवेट होना ही सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण हमारी पाचन क्रिया जो है मंद पड़ने शुरू हो जाती है। अगर आप थोड़ा बॉडी को वर्किंग में रखें, थोड़ा सा वॉक कीजिएगा और खाना जो है वो थोड़ा सा हल्का लीजिएगा, क्योंकि आप अब आपकी कैलोरी बर्न तो हो नहीं रही है। तो अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जैसे आप 10-15 साल पहले कर रहे थे, भोजन की क्वांटिटी यदि उतनी ही ले रहे हैं और वर्किंग में बॉडी है नहीं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है, और जिसके कारण आपको एक मंदाग्नि रोग के शिकार इस उम्र में लोग हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें केवल इतना ही करना है कि जठरा अग्नि को थोड़ा सा दीपन किया जाए। जठरा अग्नि को बढ़ाने के लिए योग में अग्नि सार क्रिया की बात बताई गई है। वज्रासन में इसमें बैठ जाते हैं, यानी दोनों घुटने मोड़ करके एड़ियां हिप्स के नीचे रख के वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखते हैं, सांस पूरा भरें और फिर सांस को पूरा धीरे धीरे बाहर छोड़ के सांस को बाहर रोक देते हैं, तब पेट की धीरे धीरे पंपिंग करते हैं, पेट अंदर खींचते हैं बाहर करते हैं, अंदर खींचते हैं बाहर करते हैं, ऐसा सांस के बाहर रोके रहने तक 10-12 बार ही हो पाता है, फिर एक नई सांस ले लें, पेट को हिलाना बंद कर दें। इस तरह से इस पद्धति को 4-5 बार किया जाए तो आपकी पाचन क्रिया बेहतर हो जाएगी। और ये भी ध्यान रखना है, इस समस्या का जो संबंध है वो आपकी नींद से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो आपकी पाचन क्रिया हमेशा खराब रहेगी। तो रात की नींद गहरी होनी चाहिए, तब आपका पाचन क्रिया भी अच्छा होगा।
1: अक्सर हम सोचते हैं कि वृद्धावस्था में कि हमने अपनी उम्र में बहुत काम कर लिया, अब हम आराम करेंगे, लेकिन काम से आराम करना, शरीर को आराम नहीं देना।
0: जी जी
1: जी, बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं योग फॉर हेल्दी एजिंग पर, यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग पर। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70 से 75 80 केजी के आसपास मेरा वजन है। ओ पॉजिटिव मेरा ग्रुप है, ब्लड ग्रुप
1: जी।
2: पित्त मेरी प्रवृत्ति है। तो डॉक्टर साहब, मेरे कई सारे सवाल हैं, प्लीज आप नोट करें, मैडम भी नोट करें। वैसे तो खैर 21st को आप योगा डे मना ही रहे हैं हम सब, तो मेरी आप लोगों से तमन्ना है कि एक दिन जो है ना आकाशवाणी से पूरे प्रोग्राम योगा पर, सारे प्रोग्राम कैंसिल करके योगा प्रोग्राम पेश करें। जैसे एक घंटा फॉरन कार्यक्रम, एक घंटा अपने हिसाब से पेश, डॉक्टर अपनी राय दें, एक घंटा फॉरन कार्यक्रम, एक घंटा अपनी राय दें, ऐसे कुछ होगा अच्छा रहेगा।
3: आप अपना सवाल कीजिए।
2: मायने बढ़ जाएंगे।
3: आप अपना
2: सवाल। मैं अपने सवालों पे आता हूँ डॉक्टर साहब। मेरे को क्या है कि कमर में और गर्दन में प्रॉब्लम।

में प्रॉब्लम है, अब मैं आगे की ओर बेंट होता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम बढ़ रही है, पीछे की ओर बेंट होता हूँ तो मुझे उसका रिलीफ मिलता है। तो हिप्स में ना क्या है, स्टिफनेस तो नहीं है, सॉरी स्वेलिंग नहीं है, स्टिफनेस और पेन होता है। फिर धनुष होता है ना, धनुष उस किस्म का बिना शरीर हो गया है, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? और सर्दियों में बीमारी बढ़ जाती है, गर्मी में थोड़ा सा उतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस सर्दी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्या मैं विदाउट सपोर्ट बैठूं या आगे की ओर बैंड हो?

0: चाहिए, और सर्दियों में बीमारी बढ़ जाती है, गर्मी में थोड़ा सा उतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस सर्दी दोनों में बढ़ जाती है। क्या मैं विदाउट सपोर्ट बैठो या आगे की ओर बैंड हो या इंडियन टॉयलेट में ऐसे बैठता हूँ उस मुद्रा में बैठो अवस्था में मुझे परेशानी हो रही है,
1: आपने कमर और अपनी गर्दन में पीड़ा की बात कही है और आपने स्वयं ही बता दिया कि आगे झुकने से कमर में दर्द और गर्दन का दर्द बढ़ जाता है। ये सावधानी आपको बरतनी होगी। जब तक आप थोड़ा योग करके स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आपको फ्रंट बेंडिंग अवॉइड करना चाहिए। और योग की जहाँ तक बात आती है कि अगर कमर में दर्द है तो इसके लिए दो कारण हो सकते हैं। हमारी बैकबोन के अंदर एक डीजनरेटिव प्रोसेस होता है और दूसरा होता है कि हमारी जो कमर की मांसपेशियां हैं उसमें ऐंठन आ जाती है तो भी हमारी कमर में दर्द होता है। यही स्थिति गर्दन के साथ होती है। जब भी हमारी रीढ़ की हड्डी में डीजनरेटिव प्रोसेस होगा तो हमारे वर्टिब्रेस के अंदर कुछ रिड्यूस हो जाती हैं जिसकी वजह से एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से टच करती है तो उसकी वजह से नाड़ियों में एक झुनझुनी एक दर्द की लहर पैदा होती है। तो आपको इसके लिए आसान सा दो आसन हम बता रहे हैं। एक आसन पहले भी मैं वर्णन कर चुका हूँ, भुजंग आसन करेंगे, पेट के बल लेटना है और पेट के बल लेट करके दोनों हाथ अपनी कंधों के नीचे रखते हुए हाथों के सपोर्ट से अपनी गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठाएं और साथ साथ जितनी आसानी से कमर मुड़ जाए उतनी मोड़ें, क्योंकि ज़्यादा मोड़ेंगे तो एकदम बहुत तेज़ दर्द कमर में आने की संभावना होती है। धीरे धीरे मोड़ें और फिर थोड़ा रुकें 2-3 सेकंड, उसके बाद फिर माथे को नीचे ले आएंगे तो आपकी कमर में और गर्दन में उसी समय नीचे लाने पे तुरंत ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ऐसे करने से हमें आराम मिल रहा है। दूसरा हम कर सकते हैं मकर आसन। इसमें पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और दोनों घुटने मोड़ लेने चाहिए और दोनों हाथों को मकर आसन करने के लिए कंधों की सीध में फैला दिया जाता है और दोनों मुड़े हुए घुटनों को लेफ्ट साइड की ओर मोड़ें और अपनी गर्दन को राइट साइड मोड़ें। यहाँ पे 2-4 सेकंड जितना आप रुक सकते हैं आराम से रुकें, उसके बाद 2-4 सेकंड बाद फिर दोनों घुटनों को और गर्दन को बीच में ले आएं। इसी तरह से दोनों घुटनों को राइट साइड मोड़ेंगे और गर्दन लेफ्ट साइड मोड़ेंगे। इस तरह से ये विधि मकर आसन की दोनों तरफ से 4-4 बार कीजिएगा और जिस दिन आप करेंगे उसी दिन पहले दिन ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आप खुद बेटर फील करना शुरू कर दोगे।
2: जी, एक मैसेज भी हमारे पास, ये लिखते हैं, शिल्पा मैम नमस्ते, डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरी वाइफ को हर्पीस की बीमारी है, आई से नीचे की तरफ नोज़ पर पेन होता है, मेरी वाइफ कौन सा योग करें कि फ़ायदा हो? राजरानी, एज है इनकी 67 ईयर्स और रोहिणी दिल्ली से।
1: देखिए, हर्पीस एक प्रकार के जीवाणु के कारण होती है और इसमें बड़ा इरिटेशन होती है जो भी इस रोग के शिकार होते हैं तो काफ़ी इरिटेशन फील होती है, तो कुछ ठंडक चाहिए। तो ठंडक चाहिए तो इसके लिए किया जा सकता है शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। अपनी जीभ को थोड़ा सा पाइप नुमा बना के फोल्ड करें और जीभ के माध्यम से शीतल शीतल वायु को भीतर की ओर भरें और फिर होठ बंद करके अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोकें और थोड़ी रोकने के बाद दोनों नोस्ट्रिल से वायु को छोड़ दें। ये कम से कम 5-10 मिनट तक प्रतिदिन करें तो जो इरिटेशन आपके फेस के आसपास आईज के नीचे हो रही है हर्पीज के कारण उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। और इसके साथ जो भी आपको ट्रीटमेंट्स जो भी आप ले रहे हैं वो इसको

0: कंटिन्यू में रखें। अभी
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, आई एम सागर फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, इन टूडे स्ट्रेसफुल वर्ल्ड आई एम मेंटली एंड फिजिकली डिस्टर्ब्ड, विच योग आसन आई कैन डू टू बी फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव। वैसे तो इनकी उम्र 26 साल की और हम वृद्धावस्था पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने मैसेज भेजा है तो हम ले लेंगे आज के शो में। तो ये लिखते हैं कि मैं फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हूँ, तो कौन सा योगासन करूँ?
0: फिजिकली और मेंटली अनफिट होना इस बात की तरफ संकेत देता है कि आपके अंदर जो एक बायो एनर्जी है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि बायो एनर्जी हमें माइंड और बॉडी दोनों से कनेक्ट करती है। जब भी हमारी बायो एनर्जी कमज़ोर हो जाएगी तो हम फिजिकली और मेंटली दोनों में अनफिट फील करेंगे। और आपको क्या करना है, आप कुछ दिन, केवल कुछ दिन अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिएगा। राइट नोस्टिल बंद करें और लेफ्ट नोस्टिल से सांस अंदर भरना है और फिर राइट नोस्टिल से छोड़ देना है। फिर लेफ्ट नोस्टिल बंद करें, राइट नोस्टिल से भरें और लेफ्ट नोस्टिल से छोड़ देना है। ये अल्टरनेट प्रोसेस के साथ ब्रीदिंग आप करिए और कम से कम 10 मिनट ज़रूर कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि पहले दिन ही, जिस दिन आप 10 मिनट करेंगे, आप अपने अंदर बड़ा ग्रेटेस्ट चेंज फील कर पाएंगे। तो आप इसे करिएगा और फिर इसके रिजल्ट देखिएगा।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: डॉक्टर मैडम को भी नमस्कार। मैं रघुवीर सिंह ठाकुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
0: जी बोलिए रघुवीर जी।
2: मैडम मैं ये मैडम मेरे को दो तीन सवाल पूछने थे। जैसे ये मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ, मैं मेरी उम्र है 58-59-60 करीबन। तो आर्मी में क्या होता है कि कोई भी पीटी लंबी रनिंग के बाद या कुछ वार्म अप के बाद ही होती है, तो उसमें बताते हैं कि लंबी सांस नाक से लो और मुंह से छोड़ो करके। तो अब सिविल में तो ये बोलते हैं कि नाक से लो, नाक से ही छोड़ो। एक क्वेश्चन ये था। एक दूसरा क्वेश्चन मेरा श्रोता बंधु जो रघुवीर जी के लिए आपने बोला था कि जो हम जीभ को मोड़ते हैं तो उससे सांस लेते हैं, तो फिर मुंह बंद करके छोड़ना है या फिर जीभ से छोड़ना है? क्योंकि मैं ये ऑलरेडी करता हूं, जब मैं कोई भी काम मुंह करता हूं तो मैं लगा रहता हूं ऐसे। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो योगा से फायदा होता है या फिजिकल से फायदा होता है? क्योंकि फिजिकल रनिंग भी हम लोग करते हैं, जैसे हमारे तो घर रोड साइड में तो दौड़ जाते हैं, कभी टाइम नहीं मिलता। तो योगा से में फायदा होता ज्यादा कि या फिजिकल उसमें फायदा होता है, थोड़ा बताने की कोशिश करें मैडम।
0: देखिए, योग जो है वो शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को स्वस्थ करने का एक माध्यम है। फिजिकली जितना भी आप रनिंग करते हैं उससे शरीर का जो बाहरी हिस्सा है, जैसे मांसपेशियां हैं और आपका थोड़ा स्टेमिना अच्छा हो जाता है, इतना ही होता है। लेकिन यदि आप शारीरिक और मानसिक विकास और बौद्धिक विकास करना चाहते हैं तो इन सब का जो लाभ है वो केवल योग से ही मिलता है। योग हमारी भावनाओं के ऊपर प्रभाव डालता है, हमारी सोच को सकारात्मक करता है। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाती ये सब चीज़ें। आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं तो योग आपको तनाव से मुक्त करने का एक तरीका बताता है। और आप की सोच एकदम पॉजिटिव हो जाती है और आप सारा दिन रिलैक्स महसूस करने लगते हो।
1: रिलैक्स रहने के लिए तो हम योग करते हैं और योग करना भी ज़रूरी है। एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, हेलो डॉक्टर, योग क्या दिन में किसी समय भी कर सकते हैं? स्टैंडिंग पोजीशन में अगर ना कर सकते हो, क्या सिटिंग पोजीशन में कुछ क्रियाएं कर सकते हैं? सरोज मल्होत्रा, साकेत, मेरठ से।
0: सरोज जी, योग का समय सुबह और शाम का ही ठीक समय माना गया है। लेकिन यदि आप ऑफिस वर्किंग हैं और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं तो आप अपनी चेयर पे बैठे हुए भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे ट्विस्टिंग कर सकते

0: हैं, पैरों को ज़मीन पे टिका करके, और आप अपनी कमर को लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करें, फिर सेंटर में लाएं, फिर राइट साइड ट्विस्ट करें, तो इसे चेयर योगा कहते हैं। तो चेयर पे बैठे बैठे आप अपनी गर्दन काफ़ी आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं और गर्दन अकड़ गई है 6-7 घंटे काम करते, तो चेयर पे बैठे बैठे गर्दन को बैक स्ट्रेच कीजिए और गर्दन को साइड मूवमेंट दीजिए। इस तरह से 4-5 टाइम्स बैक स्ट्रेच करें, फ्रंट में लाएं, और फिर इसी तरह गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़ें, फिर सेंटर में लाएं, फिर राइट साइड मोड़ें, ऐसे 4-4 टाइम्स इसे करें। तो आप ऑफिस में बैठ के भी योग कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअली समय निर्धारित है वो सुबह और शाम का है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो फिर आप अपने ऑफिस में चेयर पे बैठ के भी योगा कर सकते हैं।
1: शायद कई बार काम करते करते हम स्ट्रेचिंग करना भी भूल जाते हैं, लेकिन बाद में जब दर्द का एहसास होता है तब हमें लगता है कि हाँ कुछ अकड़ गया है, जकड़ गया है।
0: तो जब अकड़ जाता है तो उसको करने के बाद तुरंत रिलीफ भी मिलता
1: मिलता
0: है।
1: है। एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, नमस्कार, मन को एकाग्र करने का उपाय समझाइए, क्या उसके लिए कोई योग है? अनिल गुरुग्राम से।
0: अनिल जी की मन को एकाग्र करने की ही बात हमारे महर्षि पतंजलि जी ने की है। महर्षि पतंजलि हमारे योग के गुरु कहलाते हैं, और उन्होंने कहा कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और योग करने से एकाग्रता आती है। आप योग करने के लिए एक ड्राइंग पेपर के ऊपर एक 1 रुपीस कॉइन्स का एक गोल चक्र बना लें और उसको किसी ब्लैक पेन से ऐसे फिल कर लीजिए, बिल्कुल काले रंग का एक गोल चक्र बन जाएगा। उसे आप दीवार के ऊपर कहीं पेस्ट कर लीजिए, और पेस्ट करने के बाद अपनी नासिका से 4 फीट की दूरी पर बैठ करके उस गोल बिंदु को देखें, और आप देखेंगे कि 2-3 मिनट देखने के बाद आपके चित्त में एक ठहराव आने लगता है और आपकी एकाग्रता अच्छी हो जाती है। इसे योग की भाषा में त्राटक विधि कहते हैं, और जैसे जैसे आप त्राटक विधि का प्रयोग करने लगेंगे आपके मन में एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आपके मन में अननेसेसरी जो थॉट्स आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे।
1: तो क्या ऐसे में याददाश्त बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे कि वृद्धावस्था में जाते हैं तो कई बार हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो क्या कुछ याददाश्त बढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसे योगासन है जो बढ़ती उम्र के साथ कर लेने चाहिए?
0: बिल्कुल, प्राय ये देखा गया है कि एक उम्र के बाद भूलने की बीमारी आने लगती है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, हम कोई सामान रख के भूल जाते हैं और कभी कभी किसी किसी का नाम भी व्यक्ति भूल जाता है। तो स्मृति के ऊपर योग का गहरा प्रभाव पड़ता है। जब दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है तो दिमाग की जो क्रियाशीलता है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। तो डीप ब्रीदिंग करनी होती है, इसमें एक स्मृति शक्ति विकासक योग की बात कही गई है। ये विधि खड़े होके की जाती है, दोनों पाँव को मिला करके गर्दन सामने की तरफ रखते हैं और सिर के मिडिल हेड के ऊपर फोकस करते हुए फोर्सफुली आपको इनहेल एक्सहेल 15 से 20 बार करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ब्रेन को ऑक्सीजन मिलने से ब्रेन के अंदर एक फ्रेशनेस आती है, और उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो धूमिल हुई स्मृति है फिर से जागृत हो जाती है और फिर हम स्मृति में काफी सुधार महसूस करते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं?
2: नमस्ते मैडम, मेरा नाम ब्रह्म दत्त है, मंगोलपुरी दिल्ली से कॉल कर रही हूँ।

0: अच्छा बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
1: पहले तो विशेषज्ञ जो आए हैं उनको सादर प्रणाम
2: सादर प्रणाम ब्रह्मदत्त जी।
1: जी। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी हाईफाई मशीनें हैं आजकल अत्यधिक तकनीक से युक्त, हम लोग जिम जाते हैं जिम करने, तो क्या जिम और योगा संयुक्त रूप से कर सकते हैं? क्या इसके कोई दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं?
2: नहीं,
1: कृपया
2: संयुक्त
1: बताने
2: रूप
1: का।
2: से कर सकते हैं, दोनों चीज़ें संयुक्त रूप से कर
1: धन्यवाद।
2: सकते हैं। पहले जिम कर लीजिए, और जिम पूरा जब हो जाए तो उसके बीच में 10 मिनट का थोड़ा गैपिंग रखिएगा, उसके बाद आप योग कर लीजिएगा। क्योंकि जिम जो है वो आपकी मसल्स पावर को बढ़ाता है, और योग जो है वो आपके ओवरऑल जितने भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है हमारा, और हमारा एस्क्रिटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह से हमारा पूरा जो नाड़ी तंत्र है उन पे गहरा प्रभाव योग के माध्यम से आता है। और इनमें एनर्जी आती है योग करने से। दूसरा, एक तरफ आप जिम करते हैं तो मसल्स हार्ड हो जाते हैं, टाइट करता है जिम, और योग उन मसल्स में एक नई स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। दोनों में बस थोड़ा सा ये अंतर है कि आपने जो जिम के माध्यम से मसल्स डेवलप किया है, वो योग के माध्यम से उस मसल्स को लंबे समय तक बनाए रखने में आपकी योग से काफ़ी सहायता मिल जाती है।
0: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, हम सब अपने दिन की शुरुआत चाय से करते हैं, तो क्या चाय के बाद हम योग कर सकते हैं? और हमें अपनी मील्स में क्या क्या खाना चाहिए, प्लीज़ बताएं। पूनम फ्रॉम नांगलोई।
2: पूनम जी, आप दिन की शुरुआत चाय से मत कीजिएगा, आप दिन की शुरुआत हरे नारियल के पानी से करें। सुबह उठते ही एक हरे नारियल का पानी आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास हरा नारियल उपलब्ध नहीं है, तब आप नींबू पानी पी सकते हैं, नींबू पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि नींबू पानी भी आप नहीं पीना चाहते तो सुबह फलों का एक गिलास जूस पी लिया कीजिएगा। दिन की शुरुआत आप ऐसे करें। आगे आप क्या पूछ रहे हैं?
0: वो कह रहे हैं कि वो चाय के बाद हम योग कर सकते हैं।
2: चाय के आधे घंटे के बाद आप योग कर सकते हैं। चाहे जैसे आपने शाम को 4 बजे चाय पी है तो 5 बजे आप योग कर सकते हैं।
0: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, वेरी नाइस डिस्कशन, वेरी नाइसली कंडक्टेड बाय शिल्पा गुप्ता मैडम एंड आल्सो डॉक्टर योगा टीचर। माय प्रॉब्लम इज माय स्लीप गेटिंग डिस्टर्ब ड्यू टू यूरिन। माई एज इज 60 ईयर्स। प्रोस्टेट ऑपरेशन डन मे बी ड्यू टू बीपी टैबलेट। गाइड फॉर कंटिन्यूस पीसफुल स्लीप। आई एम गेटिंग अप अर्ली। संजय जोशी फ्रॉम पुणे। तो
2: संजय जोशी जी, आप प्रोस्टेट की इस प्रॉब्लम के कारण जो इनकंटिनेंस यूरिन की समस्या है, उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक कीजिएगा। इसके लिए मैं एक आसान सी विधि आपको बता रहा हूँ। इसमें योग में आती है एक प्रक्रिया मूल बंध की। आप अपने गुदा की मांसपेशियों को अंदर स्क्वीज करें, गुदा की मांसपेशियों को स्क्वीज करते हुए कुछ देर रोके। ऐसे रोकने के कारण आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी सुधरना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे प्रोस्टेट प्रॉब्लम में सुधार होगा, आपका जो फ्रीक्वेंटली यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है और उसमें सुधार हो जाएगा। नाइट में बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने के कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। ओवरऑल इसका जो पूरे हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आप अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक कीजिए। जैसे मैंने बताया, एक नेचुरल वे है कि आप मूलबंध लगाएं, गुदा को भींच के रखने की प्रक्रिया को मूलबंध कहते हैं, इसे रोक।

0: दीजिए और फिर उसके बाद इसे ढीला कर दीजिए। कितनी बार करना चाहिए? कम से कम कंटिन्यूसली 5 मिनट तो ज़रूर कीजिए। एक आता है मल आसन। जैसे इंडियन हमारी टॉयलेट होती थी तो दोनों पैरों के बाहर हम बैठते थे, उस स्थिति का नाम है मल आसन। उसमें बैठ जाइए 2-3 मिनट और फिर बस उसे छोड़ दीजिए। इस तरह से करिए। रात्रि के समय जो लिक्विड डाइट्स है वो कम लीजिए। दूध या अन्य पदार्थ रात के सोने से पहले लेना बंद कर दिया कीजिएगा, और उससे आपकी रात को यूरिनेशन नहीं होगा और कम हो जाएगा, और जिससे नींद आपकी क्वालिटी सुधरेगी। और नींद के लिए थोड़ा सा शवासन रात को ज़रूर कर लिया करें।
1: योग ज़रूरी है, चाहे हम सुबह उठ के करें और रात की अगर नींद की समस्या है तो रात को ज़रूर करें। एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं रविंद्र पाठक, आशा पाठक फ्रॉम नीदरलैंड। वेरी रिस्पेक्टेड शिल्पा मैम जी एंड डॉक्टर सर जी, प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड रविंद्र पाठक जी का आँखों का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के कितने टाइम बाद योग शुरू किया जा सकता है? बहुत सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। वेरी थैंक्स एंड वेरी रिगार्ड्स।
0: आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है तो आप 20-25 दिन बाद हल्के हल्के योग करना शुरू कर दीजिएगा। 20-25 दिन बाद सर्जरी अगर आपकी हुई है तो 20-25 दिन बाद योग करना शुरू कर दीजिएगा, और धीरे धीरे एक हफ्ते तक जो आपका पुराना रूटीन योग कर रहा है, एक हफ्ते तक उसी रूटीन में आके कर सकते हैं। और कोई सवाल इन्होंने पूछा?
1: नहीं, उन्होंने यही पूछा था कि कितने दिन बाद योग शुरू कर सकते हैं।
0: हाँ, कर सकते हैं, 20-25 दिन बाद शुरू कर सकते हैं।
1: और एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम और डॉक्टर योगाचार्य को सादर नमन। डॉक्टर साहब, योग बंद कमरे में या खुले पार्क में करना चाहिए? योग में खान पान का क्या महत्व है? बच्चे, जवान और बुजुर्गों को कैसी डाइट रखनी चाहिए? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
0: योग हमेशा खुले स्थान पे ही करना चाहिए। बंद कमरों में योग करने से उतना लाभ हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी पाई जाती है। जब हम खुले वातावरण में योग करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर उसका प्रवाह अच्छा हो जाता है। कॉस्मिक एनर्जी के प्रवाह अच्छा हो जाने से हमारा जो सोच है वो सकारात्मक होने लगती है। और जहाँ तक आपने आहार की बात की है कि कैसा आहार होना चाहिए, अगर हमारा शरीर 10 से 22-25 साल की एज का है तो हमें अपने शरीर के ग्रोथ के लिए अच्छा प्रोटीन युक्त भोजन लेना है, जिसमें सभी तरह के तत्व शामिल हो, मिनरल्स भी हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। और अब अगर बात आ जाती है कि उम्र बढ़ गई है तो उम्र बढ़ करके हमें अपने भोजन पे थोड़ा सा संयम बरतना है। योग में ये भी बताया गया है कि शरीर को 4 भागों में बांट दिया जाए, 2 भाग भोजन के और 1 भाग जल के लिए, और 1 भाग खाली रखना चाहिए सांस लेने और छोड़ने के लिए। तो इस तरह से आप भोजन का विभाजन अपने लिए कर सकते हैं।
1: वैसे हमारा जाने का समय हो गया, लेकिन जाते जाते शॉर्ट में एक मैसेज आया है, वो मैं लेना चाहूँगी। वो लिखती हैं, उनकी एज 46 ईयर्स है, रेनू भोपाल से। प्लीज़ सजेस्ट योगा फॉर प्री मेनोपॉज वुमेन के लिए।
0: प्री मेनोपॉज के अंतर्गत जब प्री मेनोपॉज के लक्षण्स आती हैं तब प्रायः ये देखा जाता है कि महिलाओं में एक डिप्रेशन की स्थिति आने लगती है, हॉट फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। तो प्री मेनोपॉज की स्थिति में योग की कुछ विधियां, जैसे कोन आसन है, पादहस्त आसन है, ताड़ासन है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इतना कर लीजिए, इससे काफ़ी फायदा होगा।
1: और जाते जाते एक लास्ट में हमारे जो श्रोता उनके लिए मैसेज कि कोई आसन जो हर कोई कर सकता है वृद्धावस्था में अपने, जिससे कि वो स्वस्थ रहें।
0: ताड़ासन सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। ताड़ासन वृद्ध भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। कम से कम 8-10 बार ताड़ासन करें, पादस्थ

0: आसन करें और कटी चक्र आसन करें, कोण आसन करें, यही सारे आसन हानि रहित हैं, सभी कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों, उम्र केवल एक संख्या है, लेकिन स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज की चर्चा से हमने जाना कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को अधिक संतुलित, ऊर्जावान और आनंदमय बनाने का मार्ग है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे योग विशेषज्ञ योगी गुलशन कुमार। आप हमारे कार्यक्रम में आए और योग के महत्व को समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूँगी, योग अपनाइए, स्वस्थ रहिए और हर उम्र को उत्साह के साथ जिए। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, सजग रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम हेलो जलंधर। तो मैं अनाउंसर थानू कह जा रहा कि जड़ा आज दा प्रोग्राम होन लगा है ओह थाडा ऑडिशन दा प्रोग्राम होन लगा है, जिदा नाम होगा रेनबो ऑडिशन। जिमें कि धा धिन धिन धा तिन तिन धा। बस बस सरगम ज्यादा लंबी, आई मीन ताल ज्यादा लंबी चले जानी। तो जड़े प्रोग्राम पेश करन वाले ने वो है आरजे रमनीश। स्वागत करदा मैं आरजे रमनीश जी दा, जो कि यह प्रोग्राम पेश करेंगे। एक बार जोरदार ताड़ियां दे नाल स्वागत किया जावे आरजे रमनीश जी दा।
1: जी थैंक यू। अपर कहदी तुहानू नहीं लगता कि म्यूजिक थोड़ा ज्यादा इमोशनल कर दू, लाइक गल्ला थोड़ी सीरियस वाली करन नू मिल जू।
0: कोई गल नहीं सर, जे तरह तुसी म्यूजिक चलाना चाहते हो चला लो।
1: ठीक है जी, तो तुसी भी जाओ, नहीं तो तुहानू देख के ना मैनू सीरियस गल्ला याद आंदियां रहणियां। भज जो जी म्यूजिक डाउन, और चेक दो मेरे वाला म्यूजिक।
2: Well, दोस्तों, मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश, तुसी सुन रहे प्रोग्राम हेलो जलंधर। जिमें कि अनाउंसर साहब ने साडे गल कर ही लिए कि कहिंदे ना अज रेनबो ऑडिशन आ। रेनबो ऑडिशन च की होगा मैं तुहानू दस दिंदा दोस्तो। वैल तुसी कौन कहिंदे कि ना असी जदों काम करन लग जांदे आ, जां असी पढ़ाई खत्म हो जांदी आ, जां असी जॉब करन लग जांदे, बिजनेस करन लग जांदे, असी इंटरव्यू नहीं दे सकदे। ओह क्यों नहीं दे सकदे? आ तुसी साडे इत्थे आ चुके हो ते तुहानू असी सुक्के थोड़ी जान दोंगे। सुके कहने का मतलब तरी वाली सब्जी वाला सुक्का नहीं, और तरी वाली सब्जी तो पहली तरी वाली होती है, और मेरा मतलब भिंडी सुकी अरबी। हाँ जी हाँ जी, लाइक उदर ही गलबात करेंगे, लाइक उदर ही गलबात कहने का मतलब अभी तो क्वेश्चन पूछोगे, तारी जनरल नॉलेज चेक करेंगे, तारा डेटा लवेंगे ताकि अभी तारा कार्ड बना सकी। तो प्रोग्राम च स्वागत हो चुका है तारा सारे तो स्रोतों। तो फोन चेक लो, तो नंबर डायल कर लो 0181 3342 174, डायल करो, फोन करो, अपने आरजे रमनीश नाल गल करो,

0: हाँ जी हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल है? प्रोग्राम चल रहा है हेलो जलंधर ते म्यूजिक। देखो दोस्तों, चल रहे रेनबो ऑडिशन ते ना तुसी जेड़े भी रैप नू मानदे तुसी मत्था टेक के आजो, क्योंकि रेनबो ऑडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यानी कि साडे सरोते वाली। ए ऑडिशन नाल तुसी पास होंगे या फेल होंगे। हेलो हेलो
1: हेलो, सत श्री अकाल सर जी।
0: हाँ जी सत श्री अकाल जी, की नाम तुहाडा?
1: पर
0: अपना जवाब जी
1: रौनक
0: भी कहने होंगे, काश 2 घंटे का प्रोग्राम होर मिल जाए, है ना?
1: सर जी कहने 10-12 घंटे प्रोग्राम चाहिए जे तुसी आओगे।
0: अच्छा जी, ओ 2 घंटे का होर मतलब ना?
1: हाँ जी हाँ जी सर जी।
0: चलो ये भी बढ़िया, ये बारे सोच विचार करांगे। ठीक है जी,
1: ठीक है सर।
0: हाँ जी, ये साड़ी की टीम हैगी पिछे बैठी ना, पूरे एक मेंबर दी, आप मीटिंग करांगे फिर आप देखते हैं। हाँ जी हाँ जी, चलो जी सोनू साहब, चलो एक इंटरव्यू का टाइम हो गया। तुम्हारा नाम की है? तुम दस दस सोनू जी, तो एज कितनी थोड़ी?
1: 38।
0: ठीक है जी, तुहाडा पता की है? अच्छा जी, नहीं मेरा कहने का मतलब, पता है मूली का पत्ता पसंद है कि गोभी का पत्ता पसंद है?
1: गोभी का पत्ता जी।
0: अच्छा जी, गोभी तो फुल नहीं होता?
1: हां जी, बंद गोभी का पत्ता ना सर जी, वो ठीक होता
0: है। अच्छा जी, ओदे अंदर की होता है?
1: हां जी, ओदे अंदर फिर पत्ते होते, पत्ते पत्ते ही रहते हैं सर जी।
0: अच्छा जी, इत फिर पूंजे

0: हांजी हांजी दोस्तों, तो इस सुन रहे प्रोग्राम हेलो जलंधर विद आरजे रवनीश। ये नवे इंटरव्यू साढ़े नाल जुड़ चुके जिन्हें दी इंटरव्यू करनी है जी। हेलो
1: हेलो सर जी, मैं कुलजीत सिंह बोलता हूं, पिंड दादी होर जिला लुधियाना।
0: ए एक बड़े प्यारे है सारे साढ़े स्रोते, साढ़े नाम पूछने तो पहले नाम दस देंगे। इदा क्यों बट्टा मारता हुंदा कच टुट गया हुंदा हैना, उदों तां नहीं अपना नाम पहले दस दिंदे। की होया सर, खुल के नहीं हस रहे, की होया? मतलब ठीक हो? अच्छा, बंदा तो उदो हौली हसदा हुंदा जो ना कोई बरीक टहनी ते खड़ा हुंदा, जे ज्यादा जोर के असा नीचे गिर जूगा। और तो मैंने पक्का लगता तू टहनी ते खड़े कोई है ना जी, या बनेरे ते खड़े है
1: जी? सर गल दी समझ आवे ना फिर पूरा हस्सा आउंदा जी।
0: ए तो है जी। अच्छा, मतलब हादसा पूरा नहीं, मतलब पूरा ता नहीं आ रहा, गल नहीं समझ आ रही, इदा है? बिलकुल बंद होना फिर है। चलो कोई गल नहीं, अपना कुलदीप जी। कुलदीप जी, मेनू ये दसो किनिया उंगलां थोड़ियां?

हेलो भाई, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जी, आया नू दोस्तों जी, प्रोग्राम शुरू हो गया है जी, यू वाणी ते तुसी ट्यून इन कीता होया 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर दा ए केंद्र है, ते मैं हाँ थोड़े दिला दी धड़कन ते चेहरे ते मुस्कान लियान वाली थोड़े दिला दी धड़कन तुहाडी आरजे दीक्षा जी। दोस्तों, प्रोग्राम लेके हाजिर हो गई हाँ मैं, ते दस दिए नाल दी नाल अज केड़े केड़े सैगमेंट रहनगे जी, बड़े खास सैगमेंट रहने अज, ते तुसी सारे ने जाना किते नहीं है, बड़िया सारिया गल्लां बातां करनियां ते प्रोग्राम नू इंजॉय करना। असी गल करने आ सैगमेंट दी, सब ना पहले आएगा जी साडा वर्ड एक्सप्रेस, ते आज दा जड़ा वर्ड लेके आई है ना मैं, तुसी इन्ना रिलेट करोगे क्योंकि ये जड़ी सिचुएशन आज तुसी सारे जने फील कर रहे हो, और तुहाडे लिए ओ सिचुएशन दे लिए एक वर्ड लेके आई हां मैं। फिर आएगा जी साडा यंगेस्ट आ, जिहदे नू मैनू लगदा कि तुसी सारे जने बहुत ज़्यादा पसंद करदे हो क्योंकि वह है ही इन्ना वधिया सैगमेंट, ते जिहदे विच असी एक बड़ा ही इंटरव्यू लेके आए हां तुहाडे लिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। फिर आएगा जी साडा रोज़गार समाचार, जे तुसी जॉब करना चाहते हो या तुसी कोई एग्जाम फिल करना चाहते हो गवर्नमेंट, तो तुसी जरूर मतलब रोज़गार समाचार सुनियो, बड़े ही इंटरेस्टिंग है, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल शेयर करांगी। इसी दे नाल असी अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है शुरू करने आ, ते प्रोग्राम की शुरुआत असी हमेशा करते हैं जी कुछ नवी चीज़ लेके आने आ, क्योंकि हर दिन कुछ खास खास हुंदा है, ते कुछ खास मनाया जाता है। अज दे दिन जाने कि 10 जून दुनिया भर के ना अंतरराष्ट्रीय सभ्याचारा विचकार संवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन मनाया जा रहा है। दोस्तों, अगर असी गल करिए तां साडी दुनिया दे विच ना अनेक देश ने, भाषावां ने, धर्म है, कल्चर ने, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषा है, अलग अलग उन्होंने विचार है, धर्म है, सब कुछ अलग अलग अलग उन्होंने हैरीटेज है, तो जिहड़ा सभ्याचार है ना बड़ी ही वक्री पहचान हुंदी है। असी अगर असी पंजाबियों की गल करिए तो साडा साडी भाषा पंजाबी है, साडा सभ्याचार कुछ अलग ही है, बहुत सारे इदा दे होर देश ने जिन्हां दा सभ्याचार अलग है। अलग अलग सभ्याचार जदों इकट्ठे हो जाते ना एक दूसरे नाल विचार अपने साझा करते हैं, तो उन्होंने सारे साझा करना चाहिए, और उन्होंने जेडे कि असी गल करते हैं भाषावां है, धर्म है, कल्चर है, इन्हां सारिआं नूं ना सानूं रिस्पैक्ट भी देनी चाहिए है। तो ये दिन है ना जिहड़ा इसे करके मनाया जाता है, इसे मैसेज नूं वधाया जाता है अगे कि सारे देशों की भाषावां

0: वो इदा ही है कि फोटोग्राफी एज अ हॉबी, बट क्योंकि हजे स्टडीज़ भी चल रही ने ते उस तो बाद घर का भी काम थोड़ा बहुत होंगे या तां करके मैं फोटोग्राफी एज अ हॉबी ही करता पाया। बट मेरा ये गोल कह सकते हैं या फिर विश कह लो कुछ भी कह लो भी मैं थोड़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वाल भी जावा, क्योंकि मैनू घूमन दे विच बहुत इंटरेस्ट है ना। ट्रैवलिंग मैनू बहुत वधिया लगती है ते कितने ना कितने जाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जाके शूट करना है ना, वो बहुत मैं चाहना भी मैं करा। बट हजे कह लो पढ़ाई करके है ना, उदा ही रूटीन करके, ते प्लस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगती है, तां करके हजे मैं उस साइड नहीं जा रहा। बट इन द कमिंग ईयर्स मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वाल भी जावांगा।
1: ते चिराग, तुसी अपना करियर हुन एज अ फोटोग्राफर एस्टैब्लिश करना चाहोगे?
0: हजे तां मैं पढ़ाई कर रहा कॉमर्स फील्ड दे विच, अकाउंटिंग फील्ड दे विच, बट जे मैनू फ्यूचर दे विच मौका मिलिया तां डेफिनेटली मैं अपना एक फोटोग्राफी बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहूँगा। हजे मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा, फिर नहीं सोच रहा उसके बारे, क्योंकि वो एक प्रॉपर टीम चाहिए है ना। बट इन फ्यूचर जे मैं चाहवा तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो इन फोटोग्राफी एज अ बिजनेस।
1: ते चिराग, हुण ये दसो कि जे किसी ने फोटोग्राफी की फील्ड दे विच अपना पहला कदम रखना है तो उन्होंने किहड़ियां चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए है?
0: मैनू लगता है जे किसी ने फोटोग्राफी फील्ड दे विच अपना कदम रखना है तो बंदे नू कुछ कु चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नॉट टेक्निकल, बट जिहड़ी चीज़ का मैं ध्यान रखिया सी ओह ये सीगा वी मैं लोगों के ओपीनियन ज़्यादा नहीं सुने सीगे है ना। कई लोग की कह देंगे भी नहीं फोटोग्राफी क्यों करता पाया बच्चा तुहाडा है ना, ये इन्नी कोई वधिया फील्ड नहीं हैगी जां कुछ है ना। तो मैंने लगता है कि यह बहुत वधिया फील्ड हैगी है, क्योंकि ये आर्ट ते टेक्नोलॉजी इकट्ठे है। प्लस मैंने लगता है कई लोग बहुत जिमें कह लो नखरे करते हैं ना भी आह किदां दी फोटो खिंच ली, आह किदां दी फोटो खिंच ली। नो डाउट मैं उन्होंने फोटो नहीं खिंची सी, मैं नेचर की फोटो खिंची सी, बट हर एक बंदे का अपना नज़रिया होंदा चीज़ नूं वेखण दा, इसलिए बंदे नूं जो पसंद है वह चीज़ करे। मैंने लगता आही चीज़ करके मैं फोटोग्राफी दे विच थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा दिन दिन दिन डे बाय डे अगे नूं जा रहा, क्योंकि मैं उही करदा जो मैनूं वधिया लगता। तो बाकी तो अजक सारे ही फोटोग्राफर ने, सारिया को स्मार्टफोन्स ने, तो बहुत वधिया कैमराज ने मोबाइल्स दे विच, ते फोटोग्राफी तो सारे ही करते हैं। बाकी जिहड़ा बंदा फोटो खिंच के उन्हूं फ्रेम कर लवे, उन्हूं अपने दिल दे नेड़े ला लवे, तो इदा ही होर फोटोज खिंचदा रवे, तो बस फोटोग्राफर बन गए।
1: ते चिराग, की लगता है आने वाले समय के आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस जो है ये फोटोग्राफर्स नू रिप्लेस कर देगी?
0: मैनू नहीं लगता कि जिहड़ी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस है वो फोटोग्राफर्स नू रिप्लेस कर देगी, क्योंकि प्रोफेशनल्स नू रिप्लेस कर दी पई है AI ऑलरेडी। बट मैनू लगता फोटोग्राफी एक आर्ट है, आर्ट नू मैनू नहीं लगता कोई भी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस रिप्लेस कर सकती है। हुण तुसी AI वॉइसिस तुहानू पता है आ जांदियां, बट
1: जी
0: जिहड़ी एक सिंगर की आवाज़ है ना
1: जी,
0: सिंगर पहला अपना कोई गीत लिखता है कुछ लिखता है, वो सिंगर दे विचार जिहड़े ओ उहदे अपने ने, इंसान दे जिहड़े कि इंसान दे अपने एक्सपीरियंस नाल आंदे आ। ते मैनूं लगदा है जिहड़ी भी कला है वो पहला विचार तो शुरू हुंदी है, ते AI विचार नूं नहीं रिप्लेस कर सकदा। नो डाउट एक AI तुहानूं फोटो दे सकदा बना के, बट जिहड़ी फोटो तुसीं कैप्चर कर सकदे हो वो चीज़ AI नहीं कर सकदा,
1: क्योंकि मैनूं लगदा वो विचार असीं उहनूं दिंदे हां, वो प्रॉम्प्ट असीं उहनूं दिंदे हां।
0: ग्राफिक डिजाइनर्स ने जो थोड़ी फोटो बहुत वधिया कर देंगे ने, उन्हां दा फील्ड थोड़ा हैगा आ वी AI मे रिप्लेस दैम, बट गल उत्थे आ जांदी है कि इंसान दे विचारां नूं, इंसान दे थॉट प्रोसेस नूं AI नहीं रिप्लेस कर सकदा। उस चीज़ दे विच AI हैल्प कर सकदा बट रिप्लेस नहीं कर सकता।
1: तो फिर आप कह सकते हैं कि मतलब फोटोग्राफर की जॉब बची हुई है AI तो?
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
1: तो फिर हम जाते जाते चिराग, साढ़े युवा दोस्तों लिए की संदेश है?
0: युवा नूं मैं यही मैसेज देना चाहूँगा भी भावें फोटोग्राफी होवे, सिंगिंग होवे, ड्रॉइंग होवे, जिहड़ा मर्जी आर्ट होवे, तुसी कदे भी गिव अप ना करो। कदी कदी इदा फील हुंदा है भी यार मैं अज फोटो नहीं खिंची, हफ्ता हो गया मैं कैमरे नूं हाथ नहीं लाया, क्योंकि बंदा अपनी रूटीन दे विच बिजी हुंदा है। बट अपने आर्ट नूं कदे भी छड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बंदे दे अंदर आर्ट हुंदा ही हुंदा, बंदे नूं लब्भण दी लोड़ है। तो मैनूं लगदा कि वेले बह के रील्स स्क्रॉल करन तो चंगा जे तुसी किसी भी अपने आर्ट या फिर अपने पैशन वल ध्यान दो, तो ऑब्वियसली यू विल ग्रो अप इन लाइफ।
1: तो हुण प्रोग्राम दे विच अलविदा लैण तो पहला असीं पुछ लैंदे आ कि चिराग दा फरमाइशी गीत किहड़ा है जो सुनना चाहोगे?
0: किशोर कुमार जी का कोई भी गीत सुना दिओ।
1: ठीक है जी, किशोर कुमार जी का गीत असी सुनावांगे। तो फिर हुण शुक्रिया अदा करते हैं जी चिराग, थोड़ा बहुत बहुत तुसी अज प्रोग्राम दे विच साडा साथ दिता, अपना कीमती समा साडे नाल सांझा कीता, बहुत बहुत शुक्रिया।

वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो जी तुसीं युववाणी ते मैं हाँ थोड़ी आरजे दोस्त दीक्षा ते सैगमेंट चल रहा जी साडा रोज़गार समाचार ते एक रोज़गार समाचार मैं होर लेके आ गई हाँ थोड़े सारिया दे लई। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB वालों RRB ALP 2026 वालों नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है ते इस भर्ती राही तुसीं देश भर के वक् वक् रेलवे योजना 11,127 असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट भरिया जा रही हैं। इस भर्ती दे लई तुसी 10वीं पास कीती होवे तां जां तुसी ITI डिप्लोमा या इंजीनियरिंग दी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते ने। एज लिमिट दी असीं गल करिए तां 18 तो 30 साल रखी गई है, जबकि SC ST एंड OBC वर्गां नूं सरकारी नियमां अनुसार उम्र विच छूट दित्ती गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसैस जिहड़ा साडा हैगा 15 मई 2026 तो शुरू हो चुकिया सीगा ते हुण तुसी इह जिहड़ा उम्मीदवार है 14 जून तक 2026 दी रात 11 बजे तो मतलब कि 12 बजे तो पहले तुसी अप्लाई कर सकते हो। फीस जमा करवाउन दी आखिरी मिति असीं तुहानू इह वी दस दईए असीं 16 जून नूं है। एप्लीकेशन करैक्शन विंडो 17 तो 26 जून तक खुली रहेगी ते सिलैक्शन प्रोसैस विच CBI 1 CBI 2 कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टैस डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन मैडिकल एग्जामीनेशन शामिल ने। चुने गए उम्मीदवार ने वाई लैवल 2 अनुसार शुरुआती तनखा दस दईए तां तुसी थोड़ा जिहा जानकारी लवो होर जाके। बाकी तुसी इस दे रिलेटिड होर जानकारी लेना चाहते हो या तुसी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो उस लई तुहानू असीं वैबसाइट भी दस दिंदे हां। वैबसाइट हैगी है जी www.rrbcdg.gov.in ते जाके तुसी पढ़ सकते हो ते होर सारियां असीं बहुत सारियां लेके आनी है रिक्रूटमेंट तुहाडे लिए ते तुसी इदां ही रिक्रूटमेंट सुनते रहो ते इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट करते रहो। नाल दी नाल तुहानू मैं एंटरटेन करती रहनी हाँ। अज मैं एक गाना लेके आई हाँ जी, गाने का नाम है जी वो तसव्वुर का आलम ते गाना गाया जी उदित ते अलका याग्निक ने ते तुसी इस गाने नू एंजॉय करो ते फिर मिलते हैं जी असी ते मिलते हैं फिर

0: जी दोस्तों, उम्मीद करती हाँ प्रोग्राम युवाणी तुसी इंजॉय कर रहे होवोगे। तो सैगमेंट चल रहा जी साडा यंगिस्तान, तो कड़ी तो बच चुकी है जी 5:55 हो गया जी गल करते करते। तो इसी के नाल मैं रोज़गार समाचार एक होर तुहाडे लिए लैके आ गई हाँ। अगला रोज़गार समाचार साडा आ रहा जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI वालों 19 मई 2026 SBI रिक्रूटमेंट 2026 की नोटिफिकेशन जारी की गई है। इस भर्ती राही 7,150 पोस्टा निकलिया ने। तो इस भर्ती दी तुसी की करना है जिहड़े कि किसी यूनिवर्सिटी तो अगर तुसी ग्रेजुएशन की हुई है तो तुसी अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की गल करिए 28 तो लेके 30 साल रखी गई है। रखावे वर्गा और सरकारी नियमानुसार भी छूट दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसैस है 19 मई 2026 तो शुरू हो चुकी है। तो अर्जियां भरन की जी आखिरी मिति है वह वधा के 15 जून 2026 कर दी है। तो प्रोसैस की गल करिए सिलैक्शन ऑनलाइन रिटर्न एग्जामीनेशन रहेगा, लोकल लैंगुएज टैसट शामिल है। चुने गए उम्मीदवार नू इस साल दी जिहड़ी है ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस दौरान 15,000 रुपये भी स्टाइफन भी दिता जाएगा। तुसी अगर इस जिहड़ी भर्ती रिलेटिड होर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो जां तुसी फॉर्म फिल करना चाहते हो तो इसकी जानकारी तुसी इन्हां दी वैबसाइट पर जाके लै सकते हो। वैबसाइट तुसी नोट कर लो www.sbi.com.in करियर पर जा सकते हो। तो फिर मुलाकात होएगी, फिलहाल तुसी इंजॉय करो ए ट्रैक।
1: Oh, partner, do you want a partner?

हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल ने। मैं जी थोड़ा अपना आज दोस्त रमनीत, ते तो ही सुन रहे एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रोग्राम लव यू जिंदगी च थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। वेल दोस्तों, जिंदगी एक ना अनमोल तोहफा है जो सानू ना रब वालों मिले होंदा है। ये तोहफा सह लैण दा ना नहीं, सगो हर पल नू महसूस करन, सीखण अते अगे वधण दा नाम है। जिंदगी विच खुशियां भी हन अते गम भी, कामयाबी भी है अते नाकामी भी, पर असल गल यह है कि हर तजर्बा सानू कुछ ना कुछ सिखाउंदा है। जे असी ध्यान नाल वेखिए तां हर मुश्किल सानू मजबूत बनाउंदी है अते हर खुशी सानू शुक्रगुजार बनाउंदी है। सानू जिंदगी नाल प्यार क्यों करना चाहीदा है, क्यों यह सानू मौका देंदी है अपने सुपने पूरे करन दा, अपने प्यारे नाल समा बिताउण दा ते अपनी पछाण बनाउण दा। जे असी जिंदगी नू नकारात्मक सोच नाल वेखांगे तां हर चीज़ भारी लगेगी दोस्तों, पर जे असी इस नू कबूल करके इस नाल प्यार करांगे तां मुश्किल राह भी आसान लगन लग पैंदे ने। जिंदगी नाल प्यार करन दा मतलब है अपने आप नू कबूल करना, अपनियां गलतियां तो सीखना अते हर नवे दिन नू नवी नवे उम्मीद नाल स्वागत करना। जिंदगी छोटी है इसलिए इसनू गिले शिकवे विच ना गुजारो, मुस्कुराओ, धन्नवाद करो अते हर पल खुशी नाल जिओ मेरे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कहिंदे ना कि जिवें आपां एग्जाम्पल लैंदे आ, जिवें कि किताब जिहड़ा ना किताब अरबी कतब तो बनिया है, मतलब लिखना, इकट्ठा करना, जिहड़ी सोचां नू इकट्ठा करके सदियां लई सांभ लवे। कहिंदे ना गुरु ग्रंथ साहिब विच असी सच्ची किताब कहिंदे आ, क्यों? क्योंकि वह केवल पढ़न लई नहीं जीन लई है। फलसफा है कि किताब मेरे होए लेखक दी जिंदा आवाज़ है। वह बोलदा नहीं पर जदों तू पन्ना पलटे वह तेरे कन्न च फुसफुसाउंदा है दोस्तों। सो दोस्तों गलबात करांगे अज आपां एक किताब दे उत्ते कि असल च किताब की है ते उते बारे जाणांगे ते सानू किताब तो की सीखण नू मिलदा है ते किताब होण दे की फायदे ने ते किताब क्यों पढ़नी भी चाहीदी है दोस्तों। सारा कुछ आपां बात गल बात करांगे ते किताब की सिखा जांदी है जो कि सानू बहुत काम आउंदा है दोस्तों, ते किताब दी असली एग्जाम्पल की है वह भी दसांगे दोस्तों। पर उस तो पहला एक प्यारा जिहा गाणा राजवीर जवांडा दी आवाज़

हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल ने। मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश, तो ही सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी। दोस्तों किताब ते गल चली सी ना, कहिंदे किताब दे वी चार रूप होंदे ने। किताब एक चंगी नहीं, हर किताब इंसान दे एक हिस्से नू छूंदी है। किस्म है कि राह दिखाउण वाली किताब, यानी कि जिन्हों उसनू आपां गाइड बुक कह लैंदे ना, ये किताबां कंपास वांग ने। जदों रस्ता भुल जावे ये हाथ फड़ लैंदियां है। उदाहरण वजो ना भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान। अर्जुन जंग दे मैदान च डर गया सी, कृष्ण ने गीता राही उनू उसका फर्ज याद करवाया सी। ते फलसफा है दोस्तों कि असली गुरु वो है जड़ा जवाब ना दवे, सवाल सही पूछना सिखा दवे। किताब भी यही करती है दोस्तों। दूसरी किस्म होती है दोस्त वाली किताब, यानी कि फ्रेंड बुक। जो दुनिया सो जावे किताब जागती रहती है, ना जज करती है ना थकती है। उदाहरण वजो एक बच्चा जिहड़ा स्कूल जिहड़ा जिहदा स्कूल च कोई दोस्त नहीं, वह घर आके चाचा चकना पढ़ता सी। हादसे च उहदा जिहड़ा ना इकल्लापन खत्म हो जाता सी। फलसफा यह है दोस्तों कि किताब वह दोस्त है जिहड़ा तेनू तेरे नालों वधिया जानता है, फिर भी तेनू कबूल करता है। तीसरा है शीशा वाली किताब, यानी कि मिरर बुक। यह किताबा तेनू तोड़ दिया नहीं, तेनू तेरा असली चेहरा विखाउंदिया ने। उदाहरण वजो शिव कुमार बटालवी जी ने जिहड़ी लूना पढ़ के हर इश्क करन वाला अपने दर्द नू छपाण लैंदा ते पछाण लैंदा। लगदा है तां मेरी कहानी है, पढ़ के तो इदा लगता कि यह तो मेरी कहानी है। किताब पढ़ के भी यह फलसफा है कि किताब पढ़ के भी असी नवी दुनिया नहीं लभदे, असी अपने आप नू ही नवे सिरे लभदे हैं दोस्तों। तो चौथी किस्म होंदी है हथियार वाली किताब, यानी कि वैपन बुक। ताकतवर लोग हमेशा किताबा तो डरते रहे, क्यों? क्योंकि एक किताब साम्राज्य ढा सकती। भगत सिंह जेल दे जिहड़े लैनीन ते मार्कस पढ़दा सी, बंब नालों ओदियां सोचां ब्रिटिश राज लई वड्डा खतरा सन। फलसफा है कि दोस्तों तलवार शरीर कटदी है, किताब सोच बदलदी है। ते सोच बदल गई तो दुनिया बदल गई दोस्तों, ते दुनिया बदल गई।

हाँ जी हाँ जी हाँ जी दोस्तों, मैं कह जी एक ना एंटरटेनमेंट ब्रेक हो चुका है। एंटरटेनमेंट ब्रेक से क्यों का थानू मैं ना हसाऊंगा, सरोते नू अपने सुनाऊंगा। वैल देख ना पति कहंदा कि अपनी पत्नी नू कि मैनू लगदा ना मैं तेरे बिना रह नहीं सकदी। पत्नी कहंदी ओए होए ए गल सच्ची है? ए ते पति कहंदा हाँ, क्योंकि रोटी बनाउणी नहीं आउंदी। टीचर की कहना ना अपने मुंडे कहता अपने स्टूडेंट मुंडे कह लो चलो कहता पुत्र दस ताजमहल कौन किने बनाया। तो मुंडा कहता कि मैडम जी मैनू नहीं पता जी, मास्टर जी मिस्त्रियों ने बनाया वैसे जी। तो अच्छा जी, टीचर कहता तो ना ना भी पूछ लेना सी। तो अगे मुंडा कहता और ना तो ठेकेदार कोल मैं होना मैडम जी। एक बार चो बनी नीचे करो पेटर। देखो जी की कहते अपना एक

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सपोज मैं तेरे नाल पंजाब चली जावां,
2: हैं?
1: मैंनू किथे लेके जावेंगा?
2: महल च।
1: ओ, तेरे कोल भी महल हैगा?
2: इदू बड़ा महल।
1: अच्छा।
2: वैसे मैं दो कमरे छत्ते हैं, बाकी खुला छड्डे।
3: एक ता मैनू नींद नी आउंदी रहिंदी थोड़ी याद सतांदी।
1: तुझे कोई कुड़ी पसंद आ गई?

well, I love you too. मतलब साढ़े स्रोत हैं, I love you too. Well, दोस्तों तो सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो मैं था अपना आरजे दोस्त रमनीश. वेल दोस्तों कुछ ही वेला रह गए थे, कुछ वेला कहना मतलब 6:20 होने लगे ने, ते हुण तुसी कुछ ही पला विच सुनोगे प्रादेशिक खबरां. ते जिहड़ी असीं गलबात कर रहे सी अज किताब उत्ते, कि किताब असल च की सानू सिखा दिंदी है, ते असल च असीं जे उहनूं रोज़ पढ़ीए, ते जरूरी नहीं कि आप सिर्फ स्कूल च ही किताबां पढ़ीए, किताबां बहुत तरीके दी हुंदियां दोस्तों. जे आपां उहनूं देखिया जाए एक चंगी तरह नज़रिए, आप कहते ना ज्ञान कभी खत्म नहीं होंदा, ज्ञान जिन्ना लै लो कभी वह मुकदा भी नहीं. कहना मतलब पैसे आ जाते वो चले जाते, पर जो ज्ञान एक बार आ जाता ना बंदे नू, वो कभी नहीं जाता दोस्तों. सो इसलिए किताबा पढ़निया बहुत जरूरी है दोस्तों. वैल मैं तो ज्वाइन करूँगा 10 मिनट बाद.

0: 692 करोड़ के अंतरिम बजट अलाटमेंट की तजवीज़। पंजाब सरकार वालों पटियाला विच हाइब्रिड सफाई मॉडल का आगाज। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने पंजाब पुलिस दिया महिला पुलिस अधिकारियों लिए 93 2-पहिया इलैक्ट्रिकल वाहनों रवाना किया। अफगानिस्तान खिलाफ 3 मैचों की 1 रोज़ा लड़ी तो पहला हार्दिक पांड्या सट कारण टीम तो बाहर हुए। इस ही प्रदेशक खबरों का यह बुलेटिन खत्म होंगे। राष्ट्रीय खबरों का अगला बुलेटिन तुम सुनोगे शाम 7 बजे। नमस्कार।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ

दोस्तों तो ही सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों किताब ते गल चल रही सी ते किताब दे ना तीन थम बारे भी गल कर लैने, यानी कि पिलर्स ऑफ किताब फिलोसफी। पहला है समा बचाना, यानी कि टाइम मशीन। 500 साल पुराने बंदे दी सोच 5 मिनट च तेरे दिमाग च, गुरु नानक जी नाल बैठ के गल करनी है, गुरु ग्रंथ साहिब खोल लियो, यह समय दी मशीन तो कट नहीं।

दोस्तों तो ये सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों किताब ते गल चल रही सी, ते किताब दे ना तीन थम बारे भी गल कर लैने, यानी कि पिलर्स ऑफ किताब फिलोसफी। पहला है समा बचाना, यानी कि टाइम मशीन। 500 साल पुराने बंदे दी सोच 5 मिनट च तेरे दिमाग च, गुरु नानक जी नाल बैठ के गल करनी है। गुरु ग्रंथ साहिब खोल लियो, यह समय दी मशीन तो कट नहीं। सिख्या है कि तजर्बा खरीदने लेना 60 साल जीवन दी लोड़ नहीं, 60 रुपए दी किताब ही काफी है। उत बाद आ जाती है चुप दी ताकत, यानी कि पावर ऑफ साइलेंस। मोबाइल चिकदा, टीवी रौला पौंदा, किताब चुप रहिंदी है, पर उहदी चुप च हजार आवाजा ने। एक किसान खेत दी मुढ़ ते बैठ के नानक सिंह पढ़दा, शोर मच रहा हुंदा, पर उहदी दुनिया सिर्फ ओ किताब है। सिख्या, जिहड़ा चुप सुन लवे ओ सब कुछ समझ जांदा। अखीर है आजादी, फ्रीडम। जेल च बंद बंदा भी किताब नाल आजाद, जेल च बंद बंदा भी किताब नाल आजाद। मंडेला 27 साल जेल च रहे, पर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिख गए। शरीर बनिया सी, सोच नहीं। सिख्या कहती है कि जेदे हाथ च किताब ओह कदे गुलाम नहीं हो सकता। गल करते हैं अगली, कि अज दे युग च ना किताब दा सवाल की है। लोग कहते हैं ना कि सोशल मीडिया दा जमाना है, किताब कौन पढ़ता है। सच है कि सोशल मीडिया जवाब देता, किताब सवाल पैदा करती है। सोशल मीडिया एक सेकेंड च ना 10 लाख नतीजे देता, पर किताब ना 10 साल तक तेनू एक सवाल नाल छेड़ती रहती है। उदाहरण कह लें कि यूट्यूब ते अगर एक सोशल मीडिया ते 2 मिनट दी वीडियो वेख के तुसी सफलता देना जेड़े 5 टिप्स भी भुल जाते हो, पर जड़ा गिवर है किताब है पढ़ के ना तुसी 10 साल बाद भी तुसी किसे दी मद कर दे हो ना बिना बदले दी आस दे। फलसफा है कि जानकारी डाटा, ज्ञान विजडम सोशल मीडिया डाटा देंदा है, ते किताब विजडम देंदा है।

दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी ते दोस्तों किताब दी गल चल रही सी ते या असी गल कर रहे सी कि ना जड़ी ये किताब है पढ़न दा मतलब हर घर च किताब क्यों होनी चाहिए है। सब तो पहले गल कर दे कि ना बच्चे लिए सब तो पहले ना जड़ी किताब होनी चाहिए ना बच्चे लिए होनी चाहिए है। किताब उन्हें सुपने देने सिखाती है। मोबाइल गेम सिर्फ लैवल पार कराती है। नौजवान लिए ना किताब उन्हें मैं कौन हाँ दा जवाब लभण च मदद करती है। तो बजुर्ग लिए किताब तनहाई का साथी बन जाती है। पंजाबी कहावत है कि घर की कंध ते तस्वीर ना होवे चलो पर सैल्फ ते किताब जरूर होवे। दोस्तों दोस्तों किताब पढ़न का मतलब पढ़ना मतलब आपां उहदी गल करदे हां अखीर विच कि किताब पढ़ना मतलब इकले पंच ना संगत करना मतलब मरे लोगों नाल दोस्ती करना मतलब अपने आप नाल गल करना। कवि वारिस शाह जी ने कहा है कि इश्क लाहौर दा हीर रांझे दा जिक्र एक किताब ने पंजाब दी रूह नूं अमर कर दिता। सो अज रात मोबाइल 10 मिनट लई रख के ना कोई भी किताब चक लो। अगर नहीं है तो खरीद लो दोस्तों कल पढ़ लियो। पहला पन्ना पढ़ो कौन जाने वह पन्ना थोड़ी जिंदगी का अगला अध्याय लिख दे। कहते हैं क्योंकि दुनिया च ना दो तरह के लोग होंगे ने जिन्हों को किताबा ने ते जिन्हों की जिंदगी किसी किताब वांग है। तुसी केड़े बनना चाहते हो दोस्तों वो सोचो।

0: जिद्दी गुआंढी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा लेने, पर ओ मन्नन तैयार ही नहीं सी कि सचमुच बिल जीरो आ सकता है। मैं क्या पुत्र, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सब दा बिजली बिल जीरो आन लगा। फिर बोलिया, हुण लगा ही दिना हां। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों तुसीं सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। वेल दोस्तों, बस कुछ ही वेला रह गया इस प्रोग्राम नूं खत्म होने लई, ते आखिर विच ना थानू कुछ ना कुछ आपां जरूर गलबात करके जाऊंगे किताब दे उपर, कि किताब ना सब तो वड्डी जिहड़ी चीज़ है ना, आपां गल कीती सी पिछे कि कदी इकल्ले पढ़ियो, कहण दा मतलब इकल्लेपन दा दोस्त है ना जिहड़ी किताब, ओह कमाल चीज़ है। इहदे बारे आपां गल करदे हां कि जदों सारे रिश्ते स्वार्थ मंगते ने, किताब बिना शर्त नाल खड़ी रहती है। दोस्तों लाइन यह है कि दुनिया तेनू उदो याद करती है जो ओनू लोड़ होंगी है, किताब तेनू उदो भी याद करती है जो तेनू लोड़ होंगी। उदाहरण वजो बजुर्ग बाबा घर सारे बाहर शाम नू चाह नाल बाबा बलवंत की कविता खोल लेंदे सी। कोई बोलदा नहीं पर इकल्लापन भी नहीं लगता, किताब दोस्त बन गई। दोस्तों तुसीं सुनिया जां तुसीं नोट किया होगा हमेशा कि आपां ना बहुत सारे साडे बजुर्ग होंदे आ जिहड़े अखबार अज भी पढ़ते हैं, तो पहला जमाना होंदा ही तो लोगों तो ऑप्शनस घट होंदे, किताबां रेडियो तो सुनते सी अज भी सुनते हैं, तो जिहड़ी अखबार की जिहड़ी उन्हां दी इक आदत है ना,

सो दोस्तों एसी आज द प्रोग्राम लव यू जिंदगी आई होप तुसी यानी कि आपा बहुत एंजॉय किता ते मजा आया। अखीर में यही कहूंगा दोस्तों कि जिंदगी पूरी नहीं होंदी पर सोनी ना जरूर बनाई जा सकती है। आओ इस नु मिलके कहिए लव यू जिंदगी। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।

नमस्कार, शाम दे वजगे ने साथ ते पेश ने एक बार एफएम न्यूज हेडलाइंस। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने सब तो लंबे कार्यकाल की प्राप्ति के संबंध में आज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ की नवी दिल्ली में बैठक जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक मता पास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब तो लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनने ते वधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज भारत के सब तो वध समय तक सेवा निभाने वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनने ते देश विदेश तो वधाई देण दा सिलसिला लगातार जारी है। सरकार वालों राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशों लिए 95,962 करोड़ के अंतरिम बजट अलॉटमेंट की तजवीज़। पंजाब सरकार वालों पटियाला विच हाईब्रिड सफाई मॉडल का आगाज़। सूबे का सब तो साफ सुथरा शहर बनाने लिए 30 दिन का टीचा मिथ्या गया। समाजिक सुरक्षा महिला और बाल विकास विभाग वालों जिला मानसा की एक बुजुर्ग महिला की शिकायत से तुरंत दखल दिंदियां मामले की जांच मुलजम को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने पंजाब पुलिस की महिला पुलिस अधिकारियों लिए 93 दोपहिया इलैक्ट्रिक वाहनों रवाना किया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पाकिस्तान स्थित इतिहासिक गुरधामा के दर्शनों लिए सिख श्रद्धालुओं का जत्था जयकारियों की गूंज नाल रवाना किया गया। हरियाणा राज्य महिला कमीशन की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने अपने अहदे तो अस्तीफा दे दिता है। अफगानिस्तान खिलाफ 3 मैचों की एक रोजा लड़ी तो पहला हार्दिक पांड्या सट कारण टीम तो बाहर हुए। इस सन हुण तक दी एफएम न्यूज हेडलाइंस। हुण तुसी सुनोगे अगला सिलसिलेवार प्रोग्राम 102.7 एफएम रेनबो ते।

हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं थोड़ा मित्र आर जे परविंदर एक बार फिर तो हाजिर हो गया जी, थानू एंटरटेन करने के लिए। दिन है बुधवार का, तो अज है जी 10 जून 2026, तो मैं थोड़े नाल गलबात करनी है। अज हुण प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी, केड़ा? हाँ जी, बहुत सही समझे तुसीं, फिल्मी दुनिया। तो फिल्मी दुनिया प्रोग्राम के अज असी जिन्हों बारे गलबात पाउनिया ने, जिन्हों बारे अज असी थोड़े नाल गल्लां सांझियां करनियां ने, साढ़े किसी टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेट रहे, तो उन्होंने बॉलीवुड पर बहुत ज़्यादा राज किया। इस तों इलावा उन्होंने काम अज भी ना भुलण योग, और उन्होंने साइड करैक्टर करन दे बावजूद वो छाप छड़ी जो अज भी ना भुलण योग है। तुसीं सोच रहे हो कि मैं एको बारी दस दवां, इदां तां हो नहीं सकता। तुहानूं टाइम ला के दसांगा, चंगी तरह दसांगा, और उन्होंने डायलॉग भी सुनावांगे, एंड उन्होंने फिल्मों के गीत भी थोड़ी नज़र करांगे। एंड क्योंकि उन्होंने फिल्मां ना इदा दियां रहियां ने जो अज भी जदों टीवी ते या फिर कितने होर वेखण नूं मिलदियां ने तां बंदा खड़ जांदा है, यार ये सीन तो देख के जाऊँगा, यार आ मूवी तो वेखनी वेखनी है। मतलब बहुत सारिया चीज़ा इदा दी होंदिया ने कि बंदा भुल ही नहीं सकता। सो आओ 102.7 FM रेनबो दे उत्ते थोड़ा जिहा सस्पेंस होर वधाउने आ। इस गाने तो बाद तुहानूं दसदे आ कि अज असीं किन्हां बारे गल्लां बातां करनियां ने, एंड उस तों बाद तुहानूं उन्हां दे वल लैके चलांगे। बने रहो मेरे नाल, तुहाडा मित्र आर जी परविंदर सारियां गल्लां थोड़े नाल लिख के करके शेयर करेगा। फिलहाल तुसी एक प्यारा जिहा गीत सुनो जनाब।

हाँ जी, बुझगे कि नहीं जनाब, नाच मेरी बुलबुल, तुम्हें पैसा मिलेगा, ऐसा कदरदान तुझे कैसा मिलेगा भाई। बहुत ही खिड़िया होया गीत है, एंड वन एंड ओनली नन अनदर अदैन जिन्होंने गाया, वो भी सारे दे फेवरेट ने अज भी। पर ऐसी गल कर रहे हैं जिन्हों का जन्म होया 24 अक्टूबर 1915 नू, 10 जून 1987 नू इस दुनिया नू अलविदा कह गए। साइड करैक्टर रहा इन्हों का फिल्मों के अक्सर, और खलनायक के तौर पर अक्सर नज़र आते रहे फिल्मों के जनाब। कौन जी? जीवन जी, जिन्हों के बारे अक्सर कहा जाता सी कि जेकर ये फिल्म के हो एक वक्री जान पै जाती है। जीवन जी के बारे कहा जाता है कि सुनहरी दौर गोल्डन एरा दे विच अजिहे खलनायक विलन की गल आती है जिसका बेहद रोबदार संवाद, बोलन का तरीका, अनोखे हादसे दे विच अजिहा व्यंग हुंदा सी, ते सब तो पहला नाम हमेशा जीवन साहब का आउंदा सी। उन्होंने अपनी अदाकारी नाल बॉलीवुड दे विच अजिही पहचान बनाई जो अज भी मील का पत्थर मनी जाती है। आओ उन्हां दे जीवन के बारे हुण गलबात करते हैं। कहिंदे उन्हां दा असली नाम ओंकार नाथ धर, तो असी पहला गल कर चुके हैं कि उन्हों का जन्म होंगे जी 24 अक्टूबर 1915। इस दिन थोनों दस दिए कि उन्होंने पिछोकड़ की जेकर गल करिए उन्हों का जन्म बहुत ही अमीर अते कुलीन कश्मीरी पंडित परिवार के होया। उन्होंने दादा पिता कश्मीरी रियासत गिलगित एजेंसी के गवर्नर वजीरे वजारत सन, गवर्नर वजीरे वजारत सन। तो बचपन के संघर्ष की जेकर गल करिए

कर गया वो कैसे बाजार में ऐसे, शरीफों को हम रुस्वा नहीं करते मियां जुम्मन, तैयबली प्यार का दुश्मन, हाय हाय मेरी जान का दुश्मन, हाय।

हाँ जी तैयब अली प्यार का दुश्मन आए हाय जो इन्हां दे गीत में तुसी सुनिया ते असी गल बात कर रहे हैं बहुत ही उगे अदाकार जिन्होंने अपना नाम बनाया उस दौर दे विच जिस दौर दे विच केवल आई थिंक उदो दूरदर्शन ही हुंदा सी ते जो इन्होंने किरदार निभाए अमर अकबर एंथनी विच उन्हां दा रॉबर्ट दा किरदार रॉबर्ट ते अज भी मशहूर है अक्सर जदों गलबात हुंदी है तां जदों कोई व्यक्ति खड़ा हुंदा तां उसकी मिमिक्री जरूर करन लग पैंदा है इस तो इलावा धर्मवीर जिस विच सतपाल सिंह का नैगेटिव किरदार इन्होंने प्ले किया जॉनी मेरा नाम दे विच इन्होंने हीरा का किरदार और होर फिट हिट फिल्मा नया दौर कानून लवारिस नसीब याराना वक्त और पत्थर अते हमराज मतलब एक तो बाद एक इन्होंने बैक टू बैक हिट फिल्मा दित्तियां तो ये सोच लो जेकर धर्मवीर फिल्म दे विच गल की जाती सी तां ओ फिल्म जो धर्मेंद्र जी अते उन्हां दे नाल जो हिट फिल्म रही है उस दे विच जीवन जी का किरदार किस तरीके का होएगा। अमर अकबर एंथनी दे विच तीन बहुत वड्डे अदाकार अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर अते उस तो इलावा जो उस फिल्म की कास्ट रही है उस दे विच भी जीवन जी ने बहुत वड्डा किरदार निभाया। इस तो इलावा लवारिस दे विच भी अमिताभ बच्चन साहब नसीब दे विच शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी जी अते उस तो इलावा जिन्हिया फिल्मों की जेकर गल की जाए तो इन्ह फिल्मों के चाहे कास्ट जिनी मर्जी तगड़ी होवे लीड एक्टर जेड़े मर्जी होन पर जो जीवन जी ने अपना किरदार निभाया वो अज भी ना भुलने योग है और बहुत घट अजिहा देखने को मिलता है कि जेकर साइड करैक्टर करैक्टर जे किसी ने प्ले किया हो उस किरदार नूं याद बहुत घट किया जाता है पर जीवन जी ने जो यादगार काम किया वह अज भी असी याद कर रहे हैं। हिंदी फिल्मों के नाल नाल जीवन साहब ने पंजाबी फिल्मों के भी अपना अदाकारी का लोहा मनवाया लोगों नूं अपना काम दिखाया। पंजाबी फिल्मों के तेरी मेरी एक जिंदड़ी छल्या विच अहम किरदार निभाए जिन्हां विच पंजाबी दर्शकों ने बहुत सारा प्यार दिता। परिवारक विरासत की जेकर गल करिए जीवन जी की अदाकारी विरासत उन्होंने अपने बेटे ने उन्होंने अपने बेटे किरण कुमार जी ने जिन्हों का असली नाम दीपक धर वह भी बॉलीवुड के टैलीविजन जगत के मशहूर सत्कारक अदाकार हैं जिन्होंने कई फिल्मों और सीरियल्स के काम किए और मुख्य तौर पर नैगेटिव किरदार निभाए। सो इस तरीके दल होर भी जारी रखेंगे तद तक बने रहो साढ़े 102.7 FM रेनबो के उत्ते। फिलहाल तुहानू सुना दें एक होर प्यारा जिहा गीत धर्मवीर तो असी लिया है तो तुहानू सुना दें दैन फिर उस तो बाद गल्लां बातां सिलसिला इसे तरह क्रिएट करांगे जनाब।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: अरे नैना हम मीठे बहना, अरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: छोरा गंगा किनारे वाला, किस्मत वाला। सो जी क्या बात है, ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक इंजॉय किया जी। किशोर कुमार होना दी आवाज़ दे, अमिताभ बच्चन जी फिल्म आया हुआ ते डाउन फिल्म था दे जो कहते थे काउंट डाउन, हम किसी डान का नहीं जाना था, आए हमसे कहे करवाओ था भैया ये काम, काउंट डाउन है भैया, काउंट डाउन है, कौन है डान। अक्सर जो यही गल सामने आती है तो बहुत सारिया यादा ताजिया हो जाए जो उस फिल्म को देख के लोगों ने समझा होगा। सो इस गाने के पिछे की कहानी रही होगी वह हम थोड़ा दसते हैं। गल दरअसल इदा है कि यह गीत जड़ा है ना किशोर दा ने कहते पान चबा के गाया से गीत, और खाई के पान बनारस वाला एक गीत है फिल्म के पहला नहीं सी, बिल्कुल ये सोच के तुहानू हैरानी होगी पर गल दरअसल अजिही ही है। इस फिल्म दे विच ये बिल्कुल नहीं सी गीत, बट जदों कहिंदे अमिताभ बच्चन की फिल्म डाउन का नाम लेंदे आ हमेशा जहन दे विच आउंदा है वह गीत है खाई के पान बनारस वाला। पर यह गीत शामिल किवें होया दसदे आ, जदों डाउन पूरी तरह बन के तैयार हुई तो इस दे निर्देशक चंद्र बारोट जी ये फिल्म वह अपने गुरु अदाकार मनोज कुमार जिन्होंने भारत कुमार भी कहा जाता है वह मनोज कुमार जी को लेके गए। मनोज कुमार जी ने फिल्म देख के कहा यह फिल्म बहुत ज़्यादा तेज़ है, दर्शक थक जाएंगे। सैकेंड हाफ में जो अमिताभ बच्चन दौड़ भज रहे होंगे ने तो एक अजिहा गीत चाहिए जिथे दर्शक सुख का सह ले सकन। अक्सर होंगे कि जो सीन क्रिएट किया जाता तो सीन के नाल नाल दर्शकों का उत्साह भी जरा उत्ते थले होंदा रहिंदा। अक्सर जो होंगे कि डरावनी फिल्म देख के हॉरर मूवी देख के दर्शक अचानक चौंक जाते हैं आ की हो गया, बहुत सारिया चीज़ा अजिहिया सामने आदि ने तो दर्शक की धड़कन उत्ते थले होंगी रहती है। लगातार कोई तेज़ गाना होंगे तो दर्शक उस लहजे के नाल सुनता है, तो बहुत ध्यान दे विच रख के कोई फिल्म जिहड़ी है कोई गीत जिहड़ा तैयार करना पैंदा। तो मनोज कुमार जी ने यही सोचा कि फिल्म बहुत ज़्यादा तेज़ है, दर्शक जिहड़े थक जाएंगे। सैकेंड हाफ में जो अमिताभ बच्चन भज दौड़ रहे होंगे ने तो अजिहा गीत एक चाहिए तय जिथे दर्शक सुख का सह लै सकन, थोड़ा मनोरंजन हो। तुरंत अनंत कल्याण जी आनंद जी की एक धुन कढ़ी जो उन्होंने पहला किसी होर फिल्म लई बनाई हुई सी पर उत्थे वरती नहीं गई सी। आनंद बख्शी जी के बोल लिखे गए सी खाई के पान बनारस वाला, तो किशोर दा ता किशोर दा कहिंदे जदों स्टूडियो बुलाया गया तो कहिंदे जदों किशोर दा स्टूडियो रिकॉर्डिंग लई पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जदों तक मेरे मूँह विच असली बनारसी पान नहीं होगा मैं इस गीत नाल इंसाफ किवें करांगा। पान चबर दे नाल आवाज़ दे विच लड़खड़ाहट

ਤੇ ਦੇਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। स्टूडियो का नज़ारा खास तौर पर बनारसी पान मंगवाए गए किशोर कुमार इको वार दे विच दो तीन पा पान जड़े हन ओ मूँह दे विच रखते ने गीत गाते ने स्टूडियो दे विच फर्श ते ही पान की पिचकारी मार देते हैं जिसलिए बाद विच स्टूडियो स्टाफ तो उन्होंने माफ़ी मंगी पर विचकार जो हो जे अरे हाँ हसण दी आवाज़ा आउंदियां हन तां किशोर कुमार ने लाइव पान चबदे होए ही कटियां ने तां मैं कहना जी ये सिर्फ किशोर कुमार ही कर सकते ने ते इस दे लई उना नू सल्यूट है ते ताड़ियां बन दिया ने। बहुत ही खूबसूरत काम वो उस दौर दे विच सिर्फ किशोर कुमार कर सकते ने। सो आओ इस तरीके दी गल्लां होर थोड़े नाल सांझियां करांगे गाने दे पिछे दी स्टोरियां दसांगे एक होर प्यारा गीत दैन फिर उस तो बाद उस दे पिछे दी कहानी की होवेगी वो तुहानूं दसांगे। फिलहाल तुसीं बने रहो मेरे नाल 102.7 FM रेनबो दे उत्ते एक होर थोड़ा प्यारा जिहा कैंट गीत लैके आ रहा थोड़ा मित्र आरजे परविंदर जी।

बिल्कुल जी, बहुत ही प्यारा गीत। रूप तेरा मस्ताना यार, तेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आराधना फिल्म का वो रोमांटिक ट्रैक जिस दे विच राजेश खन्ना ने अपनी हीरोइन नू बहुत ही वधिया तरीके दे नाल इस दे विच

नमस्कार, राधे वजगने आठ ते पेश ने एक बार फिर तो एफएम न्यूज हेडलाइंस। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने प्रधानमंत्री के सब तो लंबे कार्यकाल की प्राप्ति के संबंध में अज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ की नवी दिल्ली विच बैठक जारी की गई है। केंद्रीय मंत्री मंडल ने अज एक मता पास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब तो लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने वधाई।

हाँ जी, 8:02 हो चुके ने, 54 सेकेंड। ए आई आर एफ एम रेनबो ते मैं थोड़ा मित्र आर जी परविंदर। इनफो टाइम्स प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, तो इनफो टाइम्स दे विच इनफॉर्मेशन दा पिटारा आला है कि एक बार फिर तो हाजिर हो गया। दिन है बुधवार, तो अज बुधवार नूं इनफो टाइम्स प्रोग्राम दा समा हुंदा है, तो अज इनफॉर्मेशन एक तो बाद एक लैके हाजिर हो गया है। तो बहुत सारी इनफॉर्मेशन मेरे पिटारा दे विच मौजूद ने। कि इनफॉर्मेशन तुहानूं पहलां दसनी है, कि बाद च दसनी है, तो कि काम की गल ज़्यादा है, वो एक एक करके जरूर दसांगा। फिलहाल तुसीं हुण गाणा इंजॉय करना है, बैक टू बैक गाने भी लैके आवांगा। फिलहाल तुसीं इंजॉयमेंट करनी है, तो फुल ते एंटरटेनमेंट भी करना मेरा काम है। ते की कहंदे ने, एंटरटेनमेंट, एजुटेनमेंट ते इनफोटेनमेंट, ये सारा कुछ होएगा। तद तक लिए बने रहो मेरे नाल 102.7 FM रेनबो दे उत्ते। एक प्यारा जगी दैन, फिर उस तो बाद तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़ इनफॉर्मेशन दा पिटारा। मैं थोड़ा मित्र आरजे परविंदर।

ओ इश्क तेरा तड़पावे। वैसे निक्के होंदे बच्चे की कहंदे होंदे सीगे, आओ ए मेरे को चीजी आ। बचपन दे विच ना यही शो ऑफ हुंदा सी, मेरे को चीजी आ, मेरा झग्गा पाया किड्डा सोहना लगदा। वैसे अजकल दा शो ऑफ मेरे ख्याल ना कितें भी है कि असीं सोशल मीडिया दे उत्ते बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं जिहड़ी सानूं नहीं करनियां चाहीदियां, और कितें ना कितें लोग इसनूं सैलीब्रेशन मानते हैं कि असीं जेकर आह कर दिता वो कर दिता तां असीं लोकां दे विच अपनी छाप छड्ड देवांगे। अजिही गलती कीती एक मध्य प्रदेश शिवपुरी की रहने वाली रचना गुजर जी ने, जिसने घर लखां दी चोरी हो गई। उन्होंने की किया, यूट्यूबर हन के रचना गुजर जी जिन्होंने सोशल मीडिया से अपनी वीडियोज़ अपलोड कीतियां, उन्होंने कोल बहुत सारे गहने सी असली सोने दे, महंगे जेवरातों की वीडियोज़ बनाईया उन्होंने, और उन्होंने दिखाया कि मेरे को आ तरीके का गोल्ड पिया, वो तरीके का गोल्ड पिया। तो उन्होंने अपनी वीडियो नू वायरल करने के लिए मध्य प्रदेश के जो रचना जी सन, तो उन्होंने जो वीडियो दिखाई तो उसकी वीडियो देख के जी चोरों ने प्लैनिंग कर ली भी इतने डाका मारना। आप रिपोर्टा की जेकर मनीए तो चोरों ने वीडियो बड़ी ध्यान दे नाल देखी, बड़ी बारीकी दे नाल, अते वीडियो नू देखण तो बाद जदों चोरी का अंजाम दिता तो सिर्फ ज्वैलरी नहीं कैश भी चोरी करके लै गए। करीब 2 लाख कैश, सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी और चांदी के जेवर भी चोरी हो गए। चोरों की चोरी करने की सीसीटीवी कैमरे के कैद हो गई, बाउंड्री की फेंसिंग भी कट्टी उन्होंने, कमर के बाहर जो लॉक से वह भी कट्टिया ताकि परिवार जिहड़ा है वह बाहर ना जाए, मतलब कमरे सारे लॉक कर दते। बहुत प्लैनिंग के नाल उन्होंने काम किया क्योंकि वीडियो उन्होंने देख ली सी, तो यह भी पता लग गया होना भाई केड़ी जी कितें पई है। तो बिल्कुल जेकर तुसी चाहते हो तुहाडा समान चोरी ना हो तो शो ऑफ बिल्कुल ना करिया करो, नहीं तो पता लगे कि समान चोरी हो गया होर की। तो बिल्कुल चोरों ने जो देखा तो सारा समान चक के लै गए। तो इस घटना की रिकॉर्डिंग उन्होंने की किया कि कैमरे का तार भी कटता सी, तां कहिंदे कि उठन तो बाद जो रचना ने जो देखिया तो वह भी हक्की बक्की रह गई। तो वीडियोज़ देखने तो बाद जो रचना गुजर ने अक्सर जो सोशल मीडिया उत्ते दसदी सी कि यह है तो वह है तो इदा करना तो उदा करना, लोगों को हुण यह दस रहे हैं कि वीडियो थानू आप नहीं पानी चाहिए, मतलब लोगों को दसन की लोड़ नहीं हैगी है, थोड़े काम देख के आपे लोगों को पता लग गया कि वीडियो पानी नहीं चाहिए, नहीं तो लोगों को वैसे पता लग जाएगा कि थोड़े घर च की पिया है, तो लोगों ने वैसे फटे चक देने हैं, मतलब चोरों ने। उन्होंने असं आप अपॉर्चुनिटी दे दें ना कि आओ साढ़े घरों समान आके चुक लो, है ना।

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। भाई साढ़े को माज नहीं, साढ़े को गांव चरा सकते हैं? हैं दसो, जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए, सी गांव चरा सकते कि नहीं? यार हंसने वाली गल थोड़ी है, मैं सीरियस हाँ यार। बकरी दसो, बकरी बकरी यार फिर हंस पे। चलो हंसना खेडना भी इतना जरूरी है जी। 102.7 FM रेनबो ते मैं थोड़ा मित्र आरजी परविंदर। और गर्मी का मौसम आ चुका है। गर्मी के मौसम के अक्सर की होंगे कि गर्मी का मौसम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि बालों के लिए भी कहें बहुत सारिया परेशानियां लैके आते, जिमें तेज़ धुप, पसीना, मिट्टी, धूड़, प्रदूषण की वजह के नाल की होंगे स्कैल्प ते गंदगी जमा होने लग पैंदी है, जिस दे नाल बालों तो अजीब जी स्मैल आने लग पैंदी। कई बार लोग जिहड़े हन नियमित रूप दे नाल रेगुलर रूप तो शैंपू नहीं कर पाते तो अजिही समस्या उन्होंने आ जाती है। खासकर लंबे बालों वाली महिलावां नूं अजिही परेशानी आ जाती है क्योंकि वालों की नमी पसीना जो लंबे समय तक बनया रहिंदा है अते बाल जल्दी ही उस दे विचों स्मैल आउण लग पैंदी है। जेकर अजिही वजह महसूस करते हैं तो घरेलू उपाय उस दे लई मदद कर सकते हैं। हुण दसदे हां किस तरीके दे नाल। कहिंदे स्कैल्प ते पसीना आउणा, तेल, धूड़, बैक्टीरिया जमा होण दे नाल वालों तो अजिही समस्या आ जाती है, जिस दे नाल कई बार फंगल इन्फेक्शन, डेंड्रफ, लंबे समय तक गिले बाल जिहड़े वाल हन उह बन्न के रखण दे नाल अजिही समस्या वध जाती है। सिर्फ वाल धोणा ही काफ़ी नहीं हुंदा बल्कि स्कैल्प नूं सही देखभाल करना भी जरूरी हो जाता है। एलोवेरा जिहड़ी हुंदी है असीं उसका यूज़ कर सकते हाँ तो उस दे नाल वालां दी जिहड़ी स्मैल है बैड स्मैल उस तो दूर रखा जा सकता है क्योंकि एलोवेरा दे विच विटामिन ए

बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। ऐदे ने मेरे एक दोस्त ने अपनी फ्रेंड नू कहा सी, बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। कहती आप तो किराए की कोठी च रहना। वो कहती भला आपका घर ठीक करा ला। बहुत बारी होता पर रोमांटिक गाना जो इदा दा हुंदा बस इमेजिनेशन दे विच बंदा बहुत कुछ दस दिंदा, बहुत कुछ लिख लेंदा, ते चार तारे तोड़ के लै ही आता। पर बंदा जो कई बार डिग जाता था कई बार बहुत कुछ टुट जाता सरकार। सो ये तो सी बई मजाक की गल। अगली इनफॉर्मेशन हम लैके आना उसके वाल वादे हैं। कहते हैं अपने शरीर को हैल्दी रखने के लिए विटामिन जड़े ने बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे ने। ये सिर्फ शरीर को ऊर्जा देने का काम नहीं करते बल्कि इम्यूनिटी मजबूत रखने का भी उन्ना ही काम करते हैं जनाब। और कहते हैं कि ये सिर्फ इम्यूनिटी मजबूत नहीं रखते सगों साड़ी बॉडी साड़ी स्किन उस तरीके दे नाल हैल्दी रखते हैं जिसका असर साड़े बॉडी के उत्ते हौली हौली दिखाई देता जो कमी हो जाती है उसका असर भी सानू इसे तरीके दे नाल नज़र आता। अक्सर लोग इन चीज़ों नज़रअंदाज कर देते हैं पर उसका खामियाजा सानू भुगतना पैंदा। इन समस्यावां तो बचा जा सकता है किस तरीके दे नाल जदों असी ध्यान रखांगे। साड़े शरीर में विटामिन की जो घाट होंगी है तो अजिहे लक्षण नज़र आते हैं तो फिर असी की करना है कि जो बार बार सानू थकान होंगी है जेकर पर्याप्त रूप के नींद लैण तो बाद भी सानू थकान महसूस होंगी है तो सानू समझ लेना चाहिए साड़े शरीर के विटामिन B12 या विटामिन डी या आयरन की घाट है। इस दे नाल सानू ये चीज़ा नज़र आ रही ने तो सानू की करना चाहिए प्रोपर डाइट लेनी चाहिए जिसे विटामिन डी होवे विटामिन B12 होवे आयरन होवे। उस तो बाद सानू प्रोपर यकीन हो सकता है कि ये चीज़ों की कमी सी शायद इस करके सानू नींद प्रोपर पूरी होने तो बाद भी सानू नींद पूरी करनी पैंदी सी मतलब थके रहिंदे सी टुटे रहिंदे सी लगातार वाला दा झड़ना नाखूना दा नोहां दा कमज़ोर होना विटामिन दी कमी दा इशारा हुंदा है। कहिंदा खास तौर ते विटामिन B7 बायोटीन विटामिन डी अते विटामिन ई दी घाट दे नाल बालां अते जो नोह हुंदे ने उसनू प्रभावित करदे ने। जो स्किन हुंदी है उसनू होर रूखा हो जाना बार बार फटना चमक उसकी गायब हो जाना विटामिन ए विटामिन सी विटामिन ई की कमी के नाल अजिहा हो सकता है। तो जे विटामिन अजिहे हो जी जो स्किन होंगी है उसनू जड़ा है हैल्दी रखने के लिए पोषण देने दे सानू अहम भूमिका जी है वह निभा देंगे ने। अक्सर की होंगे कि बार बार बीमार भी पै जाने तो जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम खांसी या फिर होर सारिया चीज़ा सानू जकड़ लेंदिया ने।

असर पै सकता है। मूँह के छाले और जीभ के जलन, बार बार मूँह के छाले होना, जीभ का लाल पैना या जलन महसूस होना विटामिन B12, विटामिन B6 और फॉलेट की कमी के नाल जुड़िया हो सकता है। यह समस्या शरीर के पोषक तत्वों की कमी के शुरुआती संकेत मने जा सकते हैं। हड्डियां ते मांसपेशियां दा दर्द, विटामिन डी की कमी होने दे नाल मांसपेशियां दा दर्द, कमजोरी ते अकड़न महसूस होना लंबे समय तक यह समस्या बनी रहे तो हड्डियां कमजोर होने लग पैंदियां ने। हत्थां ते पैरां दे विच वार वार जो सुन्ना पैण महसूस होंदा है तो विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है। तो विटामिन सानू नाड़ियां नू मजबूत रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। शरीर की विटामिन नू कमी नू महसूस करन तो बाद सानू पौष्टिक आहार लेने बहुत जरूरी ने। अपनी डाइट हरे पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, दुध, दही, जेकर तुसी नॉनवेज खा सकते हो तो अंडे, दाला, मेवे और साबुत अनाज इस दे विच शामिल ने। नाल ही नियमित रूप दे नाल धुप लो, विटामिन डी की जरूरत पूरी करो। जेकर तुसी विटामिन की कमी के लक्षण थोड़े अंदर नज़र आ रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह लैके जाँच कराओ तो अपना इलाज जरूर कराओ। तो शरीर के अक्सर विटामिन तो दी कमी तो पहला सानू संकेत आने लग पैंदे ने। सानू बार बार इसनू नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिवें कि थकान, वाला झड़ना, इस तो इलावा स्किन दीयां समस्यावां ते बार बार बीमार पैना, अजिहे लक्षण जे तुहानू देखण नू मिल रहे ने तां डाक्टर दे नाल कॉल करो। आप डाक्टर नहीं बनना, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पै सकता। मतलब आप तुसी डाक्टर नहीं बनना क्योंकि तुसी डाक्टरी बिल्कुल नहीं कीती होई। मतलब डाक्टरां ने पढ़ाई कीती है तो उन्हां दा कोई तो फायदा लो ना, उन्हें तो उन्होंने कहना गल की है। सो इदा दियां गल्लां करके असी हसना भी है ते इस दे नाल असी की करना, असी थोड़े नाल गाने भी सुनाने ने थानू एंड थानू की करना है, एंटरटेन करना है। प्रोग्राम चल रहा है जी केड़ा, हाँ जी वही वाला इन्फो टाइम्स 102.7 FM रेनबो, ते मैं थोड़ा मित्र RJ परविंदर जी।

नमस्कार, रात 9:00 तो एक बार फिर तो पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के सिलसिले च आज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ मीटिंग च जड़ी है आज नवी दिल्ली दे विच हुई है। केंद्रीय मंडल ने आज एक मता पास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं सब तो लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनन की वधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज भारत के सब तो वध समय तक सेवा निभाने वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनन ते देश विदेश तो वधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार वालों राज्य अते केंद्र शासित प्रदेशों के लिए

0: 107.7 FM रेनबो देव देख ली फरमाइश कहते ना फिल्म गोरा और काला से सॉन्ग धीरे धीरे बोल एंड भेजन वाले ने संदीप मकड़ जी ज्योति मकड़ जी मन्नत मकड़ जी भारत मकड़ जी कमल सानी पिंगा वाला चौक गोराया जलंधर से स्वाइए इनकी फरमाइश को प्ले कर देते हैं जनाब।
1: धीरे धीरे

102.7 FM रेनबो पे अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंची है, कह रहे हैं आदरणीय प्रसारक जी, बेशुमार मोहब्बत फिल्म दर्द से प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा गीत। गायक किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी, अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा जी, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, खुश रहो मस्त रहो। सो आइए इनकी फरमाइश को प्ले कर देते हैं जनाब।

बिल्कुल जी, 102.7 एफएम रेनबो दे प्रोग्राम चल रहा है जी दिल चाहता है। तो जिन्होंने फरमाइश अजे तक नहीं भेजी है 9855101027 दे अपनी फरमाइश भेज देनी है एंड असी फरमाइश थोड़ी प्ले कर देंगे। तो करना की है जी, कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप दे फरमाइश भेज देनी है। तो अगली फरमाइश जो साढ़े को पहुंची है कह रहे हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, गीता संगीता कंवर जी, तुषार सिंह जी, रिंकी शेखावत जी, फिल्म साजन से कोई भी गीत सुना दीजिए। सो आइए इनकी फरमाइश प्ले कर देते हैं। एंड इस तो इलावा जो कह रहे हैं दिल चाहता है जी पिंड मूलियां वाली जिला फाजिलका से प्यार परी नमस्कार, विनोद काठपाल जी, प्रवीण काठपाल जी, हनी काठपाल जी, दीक्षा काठपाल जी, जन्नत काठपाल जी, इन्हों की फरमाइश प्ले करेंगे जी थोड़ी देर बाद। और कह रहे हैं दिल चाहता है गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार टूडी जी, प्रमोद कुमार टूडी जी, पुष्पेंद्र कुमार टूडी जी, कोई भी गीत कह रहे हैं प्ले कर दीजिए। सो आओ इन्हों की फरमाइश न मद्देनज़र रखते हुए इन्हों इसे गीत ऐड कर लें। सो आओ प्ले कर देने जी बहुत ही प्यारा जहा गीत साजन तो देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। सो प्ले कर रहे हैं जी बहुत ही प्यारा जहा गीत।

बिल्कुल जी, 102.7 एफएम रेनबो दे उते प्रोग्राम चल रहा है जी, दिल चाहता है ते इस प्रोग्राम दा आखिरी गीत अन प्ले कर देने है, क्योंकि जिन्हां दी फरमाइश भेजी हुई है जी उन्हां दी फरमाइश दा एहतराम करना जरूरी है, ते जिन्हां दी फरमाइश नहीं पूरी हुई है उन्होंने नाराज़ बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये साड़ा प्रोग्राम रोज़ आउंदा है अते साड़े प्यारे प्यारे स्रोते सानू फरमाइशां भेजदे ने, पर समय दी नज़ाकत नूं देखदे होए सानू ओही गीत प्ले कर सकते हैं जो इस समय दे विच प्ले हो सकते हुण, ते जिन्हां ने दी नहीं हुई है वो कल फरमाइशां भेज दो, साड़े आरजेस तुहाड़ी सेवा दे विच हाज़र रहणगे, ते बिल्कुल नाराज़ नहीं होना, कल तक दा वेट करना है जनाब।

कहते हैं कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है। चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। 102.7 FM रेनबो।

कहते हैं कि देखने के लिए सारा आलम भी कम और चाहने के लिए एक चेहरा बहुत। और कहते हैं कि कुछ नजर नहीं आता उसके तसव्वुर के सिवा, हसरते दीदार ने आंखों को अंधा कर दिया। 102.7 FM रेनबो, शामे गजल।

कहते हैं कि कोई वीरानी सी वीरानी है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देखकर घर याद आया। तुम परिंदों से ज्यादा, और कहते हैं कि तुम परिंदों से ज्यादा तो नहीं हो आजाद, शाम होने को है, अब घर की तरफ लौट चलो। 102.7 FM रेनबो, शामी गजल।

कहते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, और जाफिर आदमी उसको ना जानिएगा, वो हो कैसा ही साहब फहम और जका, जिस देश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। 102.7 FM रेन

कहते हैं कि बस की दुश्वार है हर काम आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। 102.7 FM रेनबो, शामे गज़ल।

नमस्कार। रात के पूरे 10:30 बज चुके हैं और FM बैंड 102.7 आपने ट्यून किया हुआ है। मैं आपके साथ आरजे परविंदर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, एक प्यार का नगमा है। कहते हैं कि फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें भी लगती है मेहनत ज़्यादा। 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आ गया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आ गया। इश्क से तबीयत ने जिस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई और दर्द बेदवा पाया। 102.7 FM रेनबो एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि याद मत रखिए ये रुदाद हमारी हरगिज़, हम थे वो ताज महल जौन जो भी ढाए जो ढाए भी गए। और कहते हैं कि सुनाई जो मैंने मुझसे खफा हुए क्यों लोग, किसी का नाम मेरी दास्तां में था ही नहीं। 102.7 FM रेनबो एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि कौन रोता है किसी के खातिर ए दोस्त, कौन रोता है किसी के खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी के बात पे रोना आया। 102.7 FM रेनबो एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि अब तो खुशी का गम है ना गम की खुशी है मुझे, अब तो खुशी का गम है ना गम की खुशी है मुझे, बेहिस बना चुकी है बहुत जिंदगी मुझे। और कहते हैं कि ना जाने किस उम्मीदवार बैठा हूँ, ना जाने किस लिए उम्मीदवार बैठा हूँ, एक ऐसी राह पे तेरी राह गुजार भी नहीं। 102.7 FM रेनबो एक प्यार का नगमा है।